0: ஆகாஷ்வாணியின் எஃப்எம் கோல் 100.1 மெகா ஹெர்ட்ஸில் தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஜயா பாரதி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीकों में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर बल दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सके। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री, वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। श्री शाह ने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
2: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज कर दिया है। एनटीए ने बताया कि यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। और खेलों में नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। पुरुष डबल्स की जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का मुकाबला चीन के तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई खेंग और वांग चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियांग से होगा। वहीं हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

इस सुरीली तान के साथ आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका अपना पसंदीदा मॉर्निंग शो आज सवेरे। स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ जया भारती। श्रोताओं, अभी अभी जो सर आपकी रूह को छू कर गुजरे हैं, वे गवाह है आज के दिन की महानता के, जिसका जिक्र हम कार्यक्रम के आखिरी सेगमेंट में करेंगे। सबसे पहले हम आपको

0: Hello Jaya, and a very warm welcome to all our listeners tuned into Akashvani FM Gold on 100.1 megahertz and the Akashvani network. And Jaya, you have truly mentioned that there is so much that we have for our listeners today, especially in the last segment. And hum bhi bahut utsuk hain ye janne ke liye ki aapne jo dhun bajayi thi wo kisse related hai aur kyun aap hame ye dhun suna rahe hain. And so much more, dear listeners, so stay with us for the next half an hour. But let's start with the news first, Jaya.
1: बिल्कुल, इस वक्त के मुख्य समाचारों की तरफ रुख करते हैं। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता निर्माण। कोशिश है कि तकनीक के जरिए सहयोग बढ़े और आने वाली डिजिटल चुनौतियों के लिए दुनिया को और मजबूत बनाया जा सके। टेक्नोलॉजी हमें भविष्य की ओर ले जाती है, लेकिन हमारी कला और संस्कृति हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखती है। और अब अगली खबर देश की इसी रचनात्मक और कलात्मक विरासत से जुड़ी है।
0: वेरी ट्रू जया, द ललित कला अकादमी विल इनॉग्रेट द 65th नेशनल एग्जीबिशन ऑफ आर्ट टुडे एट द ललित कला आर्ट गैलरीज रविंद्र भवन, New Delhi, this evening. The exhibition will showcase diverse and inspiring expressions across various forms of visual art, highlighting the creativity and artistic spirit of India. Secretary, Ministry of Culture, Vivek Agarwal, Government of India, will attend the inaugural ceremony as the chief guest, while K.K. Mishra, Joint Secretary, Ministry of Culture, will be the guest of honor. Eminent artist P.R. Darose will also grace the occasion with his presence. The exhibition is expected to bring together a wide range of artistic expressions and provide art enthusiasts with an opportunity to engage with contemporary and diverse practices in Indian visual art.
1: और अब चलते हैं जहां पे भारतीय रेलवे ने एक यात्री के शिकायत पर त्वरित कार्रवाई का उदाहरण दिया है। दरअसल बनारस नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे एक यात्री ने इस महीने की 16 अगस्त को सोशल मीडिया पर खाने की गुणवत्ता को लेकर शिकायत की थी। इसके बाद IRCTC ने संबंधित कैटरिंग लाइसेंसधारी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। लापरवाही के लिए बेस किचन में खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली एजेंसी पर भी 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। रेल मंत्रालय ने कहा कि यह कार्रवाई यात्रियों की शिकायतों पर तुरंत ध्यान देने और जिम्मेदारी तय करने के प्रति रेलवे की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। तो यात्री सेवा से अब बात उस चीज की जो हमारी पहचान से जोड़ती है, हमारी भाषा। और आज की अगली खबर इसी भाषाई गौरव की कहानी है।
0: यस, मणिपुर ऑब्जर्व द 35th मणिपुरी लैंग्वेज डे यस्टरडे, कमेमोरेटिंग द इंक्लूजन ऑफ मणिपुरी इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन August 20, 1992। द मेन स्टेट लेवल प्रोग्राम वॉज हेल्ड इन इम्फाल। स्टेट होम मिनिस्टर गोविंदास कोंथू जैम सेड लैंग्वेज इज नॉट merely a means of communication but an important expression of a people's identity, culture and history. He also said the government would make efforts to seek classical language status for Manipuri before next year's language day. The message from the celebration was clear: protecting a language means protecting a community's cultural heritage.
1: जी हाँ, और भाषा की यही विविधता भारत की खूबसूरती है। इसी डाइवर्सिटी की एक और झलक अब पश्चिम बंगाल से सामने आई है। दरअसल पश्चिम बंगाल में कल नेपाली लैंग्वेज 35th कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन डे उत्साह के साथ मनाया गया है। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गोरखा समुदाय को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारत एक बहुभाषी देश है और अलग अलग भाषाएं और संस्कृतियां देश को एकता के सूत्र में बांधती है। उन्होंने लोगों से 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की यात्रा में सक्रिय भागीदारी की अपील भी की। यानी अलग अलग भाषाएं लेकिन भावना एक और लक्ष्य केवल एक, एक भारत श्रेष्ठ भारत। भाषा हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है, लेकिन इंसान की जिज्ञासा उसे धरती से बहुत दूर अंतरिक्ष तक भी ले जाती है। अब एक ऐसी ही रोमांचक खोज खबर।
0: जी, दिस इज रिगार्डिंग अ न्यू एक्सोप्लैनेट जया। एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिस्कवर्ड एन अनयूजुअली डेंस जायंट

0: ancient exoplanet called J523b, located far beyond our solar system. The planet is about 2.5 times wider than Earth, but its mass is nearly 23 times that of Earth. Scientists believe it is predominantly rocky, making it an extremely rare and unusual world. JJ523b completes an orbit around its star in just 17.75 days. What makes the discovery especially interesting is that its existence challenges traditional theories of planet formation. Scientists believe it may have lost a thick gas envelope over time, or it may have been formed after a massive collision between rocky planets. In other words, this distant world is giving scientists a very close look at the mystery of how planets are born, and especially for those who are interested in astronomy and planets and the cosmos, unke liye to ye khabar bahut hi interesting hai.
1: तो रेनू अब अंतरिक्ष की इस पहेली से वापस धरती पर लौटते हैं और उस सवाल पर जो लाखों परिवारों के भविष्य से जुड़ा है, शिक्षा के अवसर सब तक कैसे पहुंचे? सरकार ने बताया है कि शेड्यूल्ड कास्ट छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पर खर्च लगातार बढ़ रहा है, यानी कि 2023-24 में इस योजना के तहत करीब 5,475 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और ये राशि 2025-26 में बढ़कर 6,208 करोड़ रुपए हो गई है। 2021-22 से स्कॉलरशिप की केंद्रीय राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि DBT के जरिए सीधे आधार सीडेड बैंक अकाउंट्स में भेजी जा रही है। सरकार का कहना है कि इससे छात्रों तक स्कॉलरशिप की राशि पहुंचाने की प्रक्रिया सरल, तेज और अधिक पारदर्शी हुई है, क्योंकि शिक्षा का रास्ता तभी मजबूत होगा जब आर्थिक स्थिति किसी भी प्रतिभाशाली छात्र के सपने के बीच दीवार न बने। सपनों को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ अवसर ही नहीं, सुरक्षित माहौल भी जरूरी है और प्राकृतिक आपदाओं के समय तैयारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाती है। इसी तैयारी से जुड़ी खबर अब छत्तीसगढ़ से।
0: Yes, this is regarding mock drill in Chhattisgarh. A large-scale mock drill was conducted across all 3 districts of Chhattisgarh to strengthen preparedness for flood-like natural disasters. The exercise tested coordination among the NDRF, SDRF, Army, Police, Home Guards and other departments. Officials also rehearsed the evacuation of affected people, operation of relief camps and deployment of medical teams. The purpose was simple but important: to make sure that when a real emergency occurs, every department knows what to do, how to respond and how to work together, because in a disaster, Jaya, preparation is not just planning, it can save lives.
1: बिल्कुल रेनू, और खबरों के इस सफर में थोड़ा और जोश और एक्साइटमेंट जोड़ते हैं। आपने बात की अभी तैयारी की, टीम वर्क की, और यही दो चीजें ना खेलों में भी जीत की बुनियाद बनाती है।
0: बिल्कुल,
1: तो अब रुख करते हैं दिल्ली के बैडमिंटन कोच का। दिल्ली में चल रही BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी डबल्स क्वार्टर फाइनल में उतरेंगे। मेन्स डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी लियांग वी किंग और वांग चांग से होगा। वही विमेंस डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भिड़ंत चाइना की ही चौथी वरीयता प्राप्त जिया यी फान और जांग शू शियान से होगा। दोनों भारतीय जोड़ियों ने प्री क्वार्टर फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया था और अब उनकी नजरें अगले दौर में जगह बनाने पर है। देश भर के खेल प्रेमियों की निगाहें इन मुकाबलों पर रहेंगी और आज के खिलाड़ी जीत के लिए कोर्ट पर उतर रहे हैं, लेकिन चैंपियंस सिर्फ एक दिन में नहीं बनते, उन्हें वर्षों लगती है, मेहनत लगती है, सही गाइडेंस और सही समय पर पहचान की जरूरत होती है। और इसी सोच के साथ भारत अब 2036 ओलंपिक्स के लिए अगली पीढ़ी के एथलीट्स तैयार करने पर जोर दे रहा है।
0: Yes, my next story is regarding the same. Union Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandaviya has called for an accelerated and comprehensive talent identification program to build India's athlete pool for the 2036 Olympics. At the 63rd governing body meeting of the Sports Authority of India, he stressed that talent identification must cover the entire sporting pyramid. That means looking for promising athletes not only in major cities but also across schools, districts and colleges. The initiative follows Prime Minister Narendra Modi's call for a nationwide sports talent hunt. The vision is simple: identify talent early, nurture it properly, and give young athletes the opportunity to compete

0: at the highest level.
1: और अब समय है महानगरों से जुड़ी खबरों का, तो सबसे पहले शुरुआत करें चेन्नई से।
0: थैंक यू जया। द सदर्न इंडिया रीजनल काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया विल ऑर्गेनाइज अ फाइनेंशियल एंड टैक्स लिटरेसी अवेयरनेस ड्राइव टुडे ऑन द टॉपिक माई फैमिली माई मनी अंडरस्टैंडिंग लोन्स एंड स्लोन शॉक्स। द प्रोग्राम विल बी हेल्ड एट अ प्राइवेट स्कूल इन चेन्नई। द अवेयरनेस प्रोग्राम विल बी फॉलोड बाय अ क्विज विच विल बी अटेंडेड बाय 3,000 स्टूडेंट्स। द इनिशिएटिव इज पार्ट ऑफ ICAI efforts to promote financial and tax literacy among young people and equip students with basic knowledge to make informed decisions.
1: और अब बात करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। दरअसल कल केंद्र सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया है और यह प्लान दिल्ली को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण के अनुकूल और समावेशी राजधानी में बदलने के लिए दीर्घकालिक ढांचा प्रदान करता है। अनावरण के दौरान आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 30 से 40 लाख नए फ्लैट जोड़े जाएंगे और इसका उद्देश्य शहर की विशाल आबादी की आवास मांगों को पूरा करना है। तो रेनु, जिस तरह से राष्ट्रीय राजधानी में लोगों की भीड़ बढ़ रही है, चाहे वो काम के सिलसिले को लेकर हो, पढ़ाई के सिलसिले को लेकर हो, तो ऐसे में ये खबर सही में मायने रखती है।
0: बिल्कुल मायने रखती है। एंड मूविंग ऑन टू बेंगलुरु मेट्रो, कर्नाटका टूरिज्म मिनिस्टर के जे जॉर्ज इनॉग्रेटेड द वन मदर मेनी मदर टंग्स एग्जिबिशन एट बेंगलुरुज नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। Open until September 20, features 24 artworks exploring motherhood and women's identity across Indian and European cultures. A key attraction is Sandro Botticelli's Madonna and Child, painted around 1490 and being shown in India for the first time after its Delhi display. The exhibition is organized by the Italian Consulate, NGMA and the Union Ministry of Culture.
1: और अब बात करते हैं मुंबई की। रेनू, महाराष्ट्र में पता ही होगा कि जो गणेश
0: उत्सव की तैयारियां शुरू होने वाली
1: बिल्कुल और कितने धूमधाम से मनाई जाती है, तो इसी बीच महाराष्ट्र सरकार का सांस्कृतिक विभाग रविवार को मुंबई में पर्यावरण के अनुकूल गणेश प्रतिमा निर्माण कार्यशाला का आयोजन करेगा। और जो आधिकारिक बयान आए हैं उसके अनुसार पंजीकरण अनिवार्य है और ₹300 का भागीदारी शुल्क देना होगा। सभी प्रतिभागियों को प्रतिमा बनाने के लिए शाडू मिट्टी और अन्य आवश्यक सामग्री के साथ साथ भागीदारी प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। ये कार्यशाला PL पांडे कला अकादमी द्वारा प्रभा देवी प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य है कि लोगों को मिट्टी के स्पर्श का अनुभव कराना और अपने स्वयं के बप्पा की प्रतिमा बनाने का आनंद प्रदान करना। जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं वो पंजीकरण और अधिक जानकारी के लिए 8779584224 पर संपर्क कर सकते हैं।
0: और जरूरी नहीं है कि हम सबको मुंबई ही जाना पड़े, हम सब अपने घर में बैठकर भी बप्पा की प्रतिमा बना सकते हैं। So, the last news I have is from Hyderabad Metro. The Greater Hyderabad Municipal Corporation or GHMC has stepped up preparations for Ganesh Utsav 2026. GHMC Commissioner R.V. Karnan, IAS, reviewed the arrangements with senior officials. Ganesh Chaturthi will be celebrated on September 14 with idol immersions scheduled for September 25th. Special arrangements are being made in newly added and merged areas where large crowds are expected. Officials will coordinate with the police, fire, irrigation, power, roads, water board, HMDA, health and other departments to manage procession routes, traffic, sanitation, lightning, medical aid and emergencies. Special arrangements will be made for the Balapur Ganesh procession and immersion. Road repairs along procession routes must be completed by September 13th. So we are all eagerly waiting for गणपति बप्पा दिसिया
1: जी। और अब चलते हैं जॉय सिटी कोलकाता की। और दरअसल पश्चिम बंगाल में महिलाओं और बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विश्वास व्यक्त किया है कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को पूरे राज्य में समान रूप से लागू किए जाने से पश्चिम बंगाल की महिलाओं और बच्चों को लाभ मिलेगा। कोलकाता में कल अपने मंत्रालय की योजनाओं के कार्यक्रमों की प्रगति का आकलन करते हुए उन्होंने एक समीक्षा बैठक की और पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को धन्यवाद दिया है और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार राज्य के साथ मजबूती से खड़ी

0: है और उन्होंने यह भी घोषणा की कि सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा, जिसके दौरान ग्रामीण महिलाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और अब बात करते हैं मेट्रोज के मौसम का कि आज हमारे महानगरों में कैसा हाल रहने वाला है मौसम का। तो सबसे पहले बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की। तो राजधानी दिल्ली में आज आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, मध्यम बारिश भी हो सकती है। शहर का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मुंबई में भी ऐसी ही स्थिति का अनुमान है, शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। कोलकाता में आज तूफान और बारिश के आसार हैं, न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।
1: And all our listeners who are intensely listening to our program, please be aware, apne umbrellas saath leke nikle jab bhi apni cities mein jaye. So talking about Chennai, it is likely to see partly cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. The temperatures are expected to range between a minimum of 27 degrees and a maximum of 37 degrees Celsius. Bengaluru is forecast to experience generally cloudy sky with light rain or drizzle. The minimum temperature is expected to be 21 degrees while the maximum may reach 29 degrees Celsius. And Hyderabad is likely to see partly cloudy sky with possibility of rain or thunderstorm or dust storm. Temperatures are expected to range from 25 degrees to 31 degrees Celsius.
0: और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 21 अगस्त है और देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन कई कारणों से महत्वपूर्ण है, तो आइए नजर डालते हैं।
1: Yes, on this day, that is 21st of August in the year 1888, American inventor William Seward Burroughs was officially granted a patent for his groundbreaking calculating machine, the first practical adding and listing machine.
0: और 1959 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर ने एक आधिकारिक उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत हवाई को संयुक्त राज्य अमेरिका के 50वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था।
1: इन द ईयर 1965 ऑन दिस डे नासा सक्सेसफुली लॉन्च द जेमिनी 5 स्पेसक्राफ्ट विद एस्ट्रोनॉट्स गॉर्डन कूपर एंड पीट कॉनराड, टेस्टिंग लॉन्ग ड्यूरेशन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इन अर्थ ऑर्बिट।
0: और आज ही के दिन 1972 में भारत की संसद द्वारा देश के वन्य जीवों, वनस्पतियों और उनके प्राकृतिक आवासों के व्यापक संरक्षण के लिए ऐतिहासिक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पारित किया गया था।
1: वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 2017 ऑन दिस डे अ टोटल सोलर एक्लिप्स widely known as the Great American Eclipse swept across the contiguous United States from coast to coast and was observed by millions of people over there.
0: और श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आज के सबसे पसंदीदा और आखिरी सेगमेंट का, जिसका वादा मैंने आपसे कार्यक्रम के शुरुआत में ही किया था।
1: जी,
0: आज का दिन भारतीय संगीत के इतिहास में एक ऐसा खालीपन लेकर आया था जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। साल 2006 में आज ही के दिन शहनाई को महफिलों से निकालकर पूरी दुनिया के दिलों में बसाने वाले संगीत के जादूगर भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खां इस दुनिया को अलविदा कह गए।

0: उस्ताद बिस्मिल्ला खां का जन्म बिहार के डुमराव में हुआ था, लेकिन उनका दिल, उनकी रूह और उनका संगीत हमेशा बनारस के घाटों में बसा रहा।
1: तमाम दुनिया घूमता हूँ, मजा लेता हूँ, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें, लेकिन जब हम अपने बनारस का ख्याल करता तो यही जगह हमारे सामने रहती है, हमारी निगाह और यही ख्वाहिश के लाती है हमें, और हमको सच पूछो तो आनंद भी मिलता है भाई। ये जगह ऐसी है, देखिए दोनों बात है, गंगा जी सामने है, यहाँ नहाइए, मस्जिद है, नमाज पढ़िए, और फिर उसके बाद बालाजी मंदिर चले गए, वहां जाकर रियाज किया। बिल्कुल फकीर तरीके का हिसाब किताब हम लोग का रहता था। हिंदुस्तान क्या, तमाम दुनिया में हम घूम रहे हैं, ये

0: ऐसा कहीं हमको नहीं दिखाई देता।
1: उस्ताद बिस्मिल्ला खान वो सिर्फ एक संगीतकार नहीं थे, वो भारत की साझी संस्कृति यानी गंगा जमुनी तहजीब की सबसे खूबसूरत मिसाल थे। एक तरफ वो पक्के नमाजी थे तो दूसरी तरफ बाबा विश्वनाथ के मंदिर में सुबह की पहली शहनाई उन्हीं की गूंजती थी।

और श्रोताओं, इतिहास का वो पल भला कौन भूल सकता है, 15 अगस्त 1947 जब भारत आजाद हुआ था। तब लाल किले से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की शहनाई ने ही आजादी का स्वागत किया था। आज भी आजादी की वो सुबह उनकी राग काफी की तान के बिना अधूरी लगती है।

0: वाकई इन स्वरों को सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खान साहब को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला, लेकिन वो इतने सादे थे कि बनारस की तंग गलियों में हमेशा साइकिल रिक्शा से ही घूमा करते थे। उनका मानना था कि संगीत कमाने का जरिया नहीं, खुदा की इबादत है। आज भले ही खान साहब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी शहनाई की गूंज अमर है। जब भी देश में शहनाई गूंजेगी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे।
1: जी, एंड टुडे वी आर आल्सो पेइंग ट्रिब्यूट्स टू सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, हु वाज एन अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, हु स्पेंट हिज प्रोफेशनल लाइफ इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ही वाज अवार्डेड द 1983 नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स विद विलियम ए फाउलर फॉर theoretical studies of the physical processes of importance to the structure and evolution of the stars. The Chandrasekhar limit is named after him. Jaya, ye bahut hi important hai bachchon ke liye, especially jo padhai karte hain physics aur maths mein. Chandrasekhar worked on a wide variety of physical problems in his lifetime, contributing to the contemporary understanding of stellar structure, white dwarf, stellar dynamics, radioactive transfer, the quantum theory of the hydrogen anion, hydrodynamic and hydromagnetic stability. तो ये सब के लिए हम आज सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को याद कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू बर्थडेज, टुडे इज द बर्थडे ऑफ केनेथ रे रॉजर्स और केनी रॉजर्स, हु इज एन अमेरिकन रिटायर्ड सिंगर, सॉन्ग राइटर, एक्टर, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर एंड एंटरप्रेन्योर। हिज सिग्नेचर सॉन्ग इज 1978 द गैम्बलर, क्रॉस ओवर हिट दैट वन हिम अ ग्रैमी अवार्ड इन 1980 and was selected in 2018 for preservation in the National Recording Registry by the Library of Congress. So let's listen into the song, The Gambler.
2: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring.

0: और अभी रेनू आपने फिजिक्स की बात की थी जिस तरह से, तो मैं भी श्रोताओं को आज की एक ऐसी ही शख्सियत से रूबरू करवाना चाहूंगी। आज ही के दिन साल 1912 में जन्म हुआ था डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश का। शायद बहुत कम लोग इस नाम से वाकिफ हों, लेकिन देश के परमाणु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को आत्मनिर्भर बनाने के पीछे इसी वैज्ञानिक का दिमाग था। डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश भारत के पहले मेटलर्जिस्ट यानी कि धातु विज्ञानी थे, जिन्हें खुद डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा परमाणु कार्यक्रम के लिए भारत वापस लाए थे, और यहां तक कि मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी उन्हें अपना गुरु और मेंटर मानते थे। कलाम साहब ने अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में लिखा है कि डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश ने उन्हें सिखाया था कि बड़ी टीमों को कैसे संभाला जाता है। साल 1961 में पद्मश्री और 1967 में पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश ने एक ऐसे पर्दे के पीछे के नायक रहे जिन्होंने भारत को परमाणु और अंतरिक्ष महाशक्ति बनाने की नींव रखी।
1: Yes, and today is also the birthday of Usain Leopold, who is an

0: was a Jamaican retired sprinter, widely regarded as the greatest sprinter of all times. He is an 8-time Olympic gold medalist and the world record holder in the 100 meters, 200 meters and 4x200 meters relay. Bolt is the only sprinter to win Olympic 100 meter and 200 meter titles at 3 consecutive Olympics, that is 2008, 2012 and 2016. And his achievements as a sprinter have earned him the media nickname Lightning Bolt. And his awards include the IAAF World Athlete of the Year, Track and Field Athlete of the Year, BBC Overseas Sports Personality of the Year, which was 3 times, and Laurie's World Sportsman of the Year, which happened 4 times. And he is the most successful male athlete of the World Championships till date.
1: और आज जयंती है आधुनिक भारतीय चित्रकला के स्तंभ नारायण श्रीधर बेंद्रे जी की, जिनका जन्म साल 1910 में इंदौर में हुआ था। एनएस बेंद्रे साहब भारत के उन गिने चुने कलाकारों में से थे जिन्होंने भारतीय ग्रामीण जीवन, यहाँ के त्योहारों और आम इंसानों की सादगी को अपनी पेंटिंग्स में अमर कर दिया। उन्होंने यूरोप की आधुनिक कला सीखी जरूर, लेकिन उनके चित्रों की आत्मा हमेशा शुद्ध भारतीय रही। कला जगत में उनके इसी बेमिसाल योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे बड़े सम्मानों से नवाजा था। और संगीत और विज्ञान के साथ साथ अगर हम चित्रकला की बात कर ही रहे हैं तो चित्रकला प्रेमियों के लिए एक और भी बेहद खास दिन है, क्योंकि आज ही के दिन साल 1961 में जन्म हुआ था दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करने वाले मशहूर चित्रकार कृष्ण कन्हाई जी का। अगर आपने कभी भी उत्तर प्रदेश के विधान भवन में लगी महापुरुषों की भव्य तस्वीरें या देश विदेश के दरगाहों में भगवान कृष्ण के मनमोहक चित्र देखे हों तो आप उनकी कला के जादू को जरूर जानते होंगे। कहते हैं कि वृंदावन की पावन धरती से ताल्लुक रखने वाले कृष्ण कन्हाई जी को कला विरासत में मिली। अपने पिता पद्मश्री कन्हाई से चित्रकार सीख कर उन्होंने चित्रकारी को नए मुकाम पर पहुंचाया। वे मुख्य रूप से कन्हाई आर्ट के लिए जाने जाते थे, जिसमें पारंपरिक कैनवास पर शुद्ध सोने की पत्तियों और कीमती पत्थरों का इस्तेमाल करके भगवान कृष्ण की लीलाओं को उन्होंने जीवंत किया है।
0: And today is the birthday of Glenn Hughes, who's an English rock bassist and vocalist, best known for playing bass and performing vocals for funk rock pioneers Trapeze, the MK3 and 4 lineups of Deep Purple, as well as briefly fronting Black Sabbath in the mid-1980s. Here we're going to listen to Glenn Hughes singing Chosen for our listeners.

0: श्रोताओं, अब समय हो चला है आप अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की।
1: स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप विद समाचार प्रभात फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। हैव अ सुपर्ब डे।
0: नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। अमेरिका ने ईरानी सरकार के साथ उसके संबंधों का हवाला देते हुए हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टलवीन में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवसंरचना, संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों और शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों

0: और विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सचिवों से देश के भविष्य को आकार देने के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने का आग्रह किया।
1: बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है। श्री मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को और मजबूत करने और उसे वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। श्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असरदार इस्तेमाल के साथ साथ इंसानी दखल सुनिश्चित करने और क्षमताओं को इंसानी विशेषज्ञता के साथ जोड़ने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी बात खत्म करते हुए जटिल चुनौतियों से निपटने और भारत के भविष्य को आकार देने के लिए बेहतर तालमेल, नई सोच और सामूहिक जिम्मेदारी की जरूरत को दोहराया। बैठक के दौरान सचिवों ने क्षेत्रवार प्राथमिकताओं, उभरती चुनौतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं पर अपने अनुभव साझा किए। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के सचिव तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पुणे में भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 17 से 21 अगस्त तक 5 दिवसीय ब्रिक्स सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT ट्रैक का आयोजन किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम की थीम है इनोवेट, कोऑपरेट और ट्रांसफॉर्म फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और सुरक्षित, समावेशी तथा मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करना है। 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन आज 21 अगस्त को 12वीं ब्रिक्स कम्युनिकेशंस मिनिस्टर्स मीटिंग के साथ हो रहा है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार पुणे से माधव जायभाई के साथ सुरेखा जोशी।
0: इसके अलावा ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चर्चा के मुख्य विषयों में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन, कौशल विकास, आसान यात्रा और पर्यटन में प्रौद्योगिकी और AI का इस्तेमाल शामिल किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल 2 छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी है। श्री शाह ने दावा किया कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टिकरण के नाम पर वंदे मातरम को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक गलती को सुधारते हुए पूर्ण गीत को कानूनी मान्यता दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सुविधाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने की प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है।

0: एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया। एनटीए ने बताया कि यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट जैसी परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: एनटीए ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। एनटीए ने कहा कि उत्तर को चुनौती देने पर फीस इसलिए ली जाती है ताकि अकारण की चुनौती से बचा जा सके और अगर चुनौती सही साबित होती है तो फीस वापस कर दी जाती है। एनटीए ने बताया कि जिस उम्मीदवार की चुनौती सही मानी जाती है उसे प्रति प्रश्न 200 रुपए वापस किए जाते हैं। एनटीए ने कहा कि फीस का उद्देश्य अकारण की चुनौती को रोकना है न कि सही चुनौती से लाभ लेना। किसी भी उम्मीदवार की सही चुनौती लाखों दूसरे उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को सही कर सकती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शिमला में शुरू हो रहा है। सत्र 3 सितंबर तक चलेगा और इसमें कुल 10 बैठक होंगी। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। मॉनसून सत्र के पहले कल शिमला में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। गृहमंत्री अमित शाह कल शाम पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर बागडोगरा पहुंचे। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, दार्जिलिंग से सांसद राजू बिस्ता और पर्यटन मंत्री शंकर घोष सहित अन्य लोगों ने श्री शाह का स्वागत किया। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। अमेरिका के वित्त विभाग के अनुसार यह नेटवर्क लेबनान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच वाणिज्यिक एयरलाइन उड़ानों से यात्रा करने वाले कुरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में पैसे भेजता था। इससे हिजबुल्ला को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर विदेशी मुद्रा हासिल करने और प्रतिबंधों से बचने का जरिया मिलता था। इस नए वर्गीकरण का उद्देश्य यह बताना है कि हिजबुल्ला ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की ओर से काम करता है और कोई स्वतंत्र संगठन नहीं है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। इलाके में बढ़ती अस्थिरता के बीच सोमालिया और यमन के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री डकैती फिर से बढ़ने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट।
3: हाल की घटनाओं में सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास कैमरून के ध्वज वाले MV लुतुफ जहाज पर कब्जा और यमन के पास इरिट्रिया के ध्वज वाले सिबू 1 टैंकर का अपहरण शामिल है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। खबरों के अनुसार 8 समुद्री लुटेरे जहाज को पुंटलैंड के डंगोरोयो जिले में गरमाल के पास नुगाल तट की ओर ले गए। सोमालिया के अधिकारियों ने बताया कि समुद्री लुटेरों ने अभी 6 जहाजों पर कब्जा कर रखा है। इनमें इस हफ्ते कब्जा किए गए 2 जहाज भी शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: और अब खेल के मैदान की हलचल के साथ हैं शक्ति सिंह।
4: हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण मैच में आज अम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। कल पूल डी में अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारत दूसरे दौर में पहुंच गया। इस ड्रॉ की मदद से सलीमा टेटे की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम पूल डी में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने में सफल रही। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में उतरेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग टी की पुरुष डबल्स जोड़ी का मुकाबला चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई केंग और वान चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शूशियान से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु, पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो को अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। और एथलेटिक्स में लुसाने डायमंड लीग में आज भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पथिरागे एक बार फिर आमने सामने होंगे। इस प्रतियोगिता के द्वारा नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में श्रीलंका के पथिरागे ने नीरज चोपड़ा को मजबूत चुनौती देते हुए स्वर्ण पदक जीता था, जबकि नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहकर रजत पदक के साथ वापस आए थे।
0: धन्यवाद शक्ति इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का

0: अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवाएं चलने की संभावना है। उधर केरलम के कई तटीय क्षेत्रों में आज समुद्र में ऊंची लहरों से समुद्र का जल स्तर बढ़ने की आशंका है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज हल्की बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, नई होगी दिल्ली। दैनिक जागरण लिखता है, 40 लाख नए घर, 695 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क से बदलेगी राजधानी। दैनिक भास्कर ने छापा है, लुटियन छोड़ बाकी दिल्ली में होंगी गगनचुंबी इमारतें, डेटा सेंटर बनेंगे, वैश्विक शहर के रूप में विकसित होगी देश की राजधानी। झारखंड में झटका शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने छापा है, सरकार ने छात्र आंदोलन के बाद दिया था आदेश, झारखंड में परीक्षाएं रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर की जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हालिया टिप्पणी पर जनसत्ता ने कूटनीतिक संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पिछले कुछ सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में आमतौर पर शांति और स्थिरता देखी जा रही है, इसलिए संभव है कि पाकिस्तान की ओर से तमाम नकारात्मक कवायदों के बावजूद वहां के बारे में वैश्विक स्तर पर अलग राय बनी है, इसलिए गोर के बयान को भारत के प्रति अमरीकी नीति में बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अमर उजाला ने रचनात्मकता से जुड़ी खबर प्रकाशित की है, चीन में कल से रोबोट ओलंपिक, बीजिंग में पहुंची 16 देशों की 666 टीमें, मैदान में उतरेंगे 2056 ह्यूमनॉइड। पत्र की उपलब्धि शीर्षक से विश्व आर्थिक मंच की 2026 की रिपोर्ट भी ध्यान आकर्षित करती है, कैंसर के टीके से एआई तक, दुनिया बदलने वाली 10 नई तकनीकें, आने वाले सालों में ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, साइबर सुरक्षा और एआई के क्षेत्र में पड़ सकता है इन तकनीकों का बड़ा असर। आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर वृद्धजनों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए लोकसत्य ने बॉक्स में खबर प्रकाशित करते हुए लिखा है, ज्ञान अनुभव का उत्सव है वरिष्ठ नागरिक दिवस।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद, द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi chairs third high-level meeting with secretaries to Government of India, urges to break silos and adopt long-term vision for country's future. Union Home Minister Amit Shah criticizes Congress Working Committee's decision to sing only two stanzas of Vande Mataram instead of full rendition. India to host 12th BRICS Communications Ministers meeting in Pune today, BRICS Tourism Ministers to meet in Jaipur. National Testing Agency says Answer Key Challenge system is designed to be fair to all students, rejects concerns of being expensive. US imposes fresh sanctions on Hezbollah, citing its ties to Iranian government. And in hockey, Indian women's team to take on Netherlands in the first match of second pool phase at FIH World Cup in Amstelveen today. Prime Minister Narendra Modi chaired the third high-level meeting with secretaries of the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security, external affairs and governance. During the meeting, the Prime Minister

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். அதனைத் தொடர்ந்து விஸ்வ தர்ப்பன் மற்றும் வேர்ல்ட் நியூஸ் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஜயா பாரதி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवसंरचना और संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों, शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सचिवों से देश के भविष्य को आकार देने के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने का आग्रह किया। भारत आज पुणे में 12वें ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन और नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इसके अलावा ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। दो दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चर्चा के मुख्य विषयों में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन, कौशल विकास, आसान यात्रा और पर्यटन में प्रौद्योगिकी तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शामिल किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल दो छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी है। श्री शाह ने दावा किया कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टिकरण के नाम पर वंदे मातरम को दो भागों में विभाजित कर दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक गलती को सुधारते हुए पूर्ण गीत को कानूनी मान्यता दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने की प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया है। एनटीए ने बताया कि यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट जैसी परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। एनटीए ने कहा कि उत्तर को चुनौती देने पर फीस इसलिए ली जाती है ताकि अकारण की चुनौती से बचा जा सके और अगर चुनौती सही साबित होती है तो फीस वापस कर दी जाती है। एनटीए ने बताया कि जिस उम्मीदवार की चुनौती सही मानी जाती है उसे प्रति प्रश्न 200 रुपए वापस किए जाते हैं। एनटीए ने कहा कि फीस का उद्देश्य अकारण की चुनौती को

0: ना है, ना कि सही चुनौती से लाभ लेना। किसी भी उम्मीदवार की सही चुनौती लाखों दूसरे उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को सही कर सकती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। अमरीका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। अमरीका के वित्त विभाग के अनुसार यह नेटवर्क लेबनान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच वाणिज्यिक एयरलाइन उड़ानों से यात्रा करने वाले कूरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में पैसे भेजता था। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। इलाके में बढ़ती अस्थिरता के बीच सोमालिया और यमन के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री डकैती फिर से बढ़ने को लेकर चिंता बढ़ रही है। हाल की घटनाओं में सोमालिया के पुटलैंड तट के पास कैमरून के ध्वज वाले एमवी लुतूप जहाज पर कब्जा और यमन के पास इरिट्रिया के ध्वज वाले सीबू 1 टैंकर का अपहरण शामिल है। और खेलों में हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज अम्स्टलफेन में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवा चलने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं दिल्ली में आज हल्की वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi chaired the 3rd high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministers and departments dealing with infrastructure and connectivity, security, external affairs and governance. During the meeting, the Prime Minister urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. Union Home Minister Amit Shah has criticized the Congress Working Committee's decision to sing only 2 stanzas of Vande Mataram instead of the full rendition. Talking to the media, Mr. Shah said that the decision amounts to an open defiance of the law enacted by Parliament and is anti-national. Mr. Shah claimed that in 1937, the Congress had divided Vande Mataram into 2 parts for the sake of appeasement. He said that on the 150th anniversary of Vande Mataram, the central government corrected this historic mistake and gave the full song legal recognition. Mr. Shah alleged that under the leadership of Rahul Gandhi, the Congress is once again following the path of appeasement for vote bank politics.
3: I appeal to my fellow citizens to reflect upon the consequences of the past decision to permit the division of Vande Mataram into 2 parts. We have unfortunately witnessed the regrettable consequences of that decision. I therefore urge all citizens to stand united against any such course of action and to reject the politics of appeasement pursued by the Congress party.
2: India will host the 12th BRICS Communications Ministers meeting in Pune today. The meeting will be chaired by Union Communications Minister Jyotiraditya Scindia. It will bring together communications ministers and senior representatives from BRICS member countries to deliberate on strengthening cooperation in information and communication technologies, ICTs, digital transformation, innovation and resilient digital infrastructure. The theme of the meeting is Innovate, Cooperate and Transform ICT for a Resilient Future. The BRICS Tourism Ministers meeting will begin in Jaipur today under India's BRICS Chairship 2026. Tourism ministers and senior officials from BRICS member countries will participate in the 2-day meeting, which will focus on strengthening cooperation in the tourism sector. Key areas of discussion will include sustainable and responsible tourism, skill development, seamless travel, and the use of technology and artificial intelligence in tourism. National Testing Agency NTA has said that its Answer Key challenge system is designed to be fair to all students and rejected concerns about it being expensive.

0: Expensive. An NTA Answer Key Challenge is an online process where candidates who take an exam like JEE Main, NEET or UGC NET can object to errors in the provisional answer key. In a social media post, NTA said if even a single candidate challenges a question and the subject experts accept the challenge, the revised answer key applies to every candidate who wrote the exam. The Trump administration has imposed fresh sanctions on Hezbollah and redesignated the group as an Iranian proxy. The U.S. Treasury Department announced sanctions on 10 individuals alleged to be part of a network responsible for transferring cash to Hezbollah. According to the Treasury Department, the network used couriers traveling on commercial airline flights between Lebanon, Turkey, UAE and Iran to move large amounts of money across jurisdictions, providing an avenue outside the formal financial system for Hezbollah to obtain foreign currency and evade sanctions. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange color warning for very heavy rainfall over Madhya Pradesh for today. The IMD forecast heavy rainfall conditions over Uttarakhand, western Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, Odisha, sub-Himalayan West Bengal and parts of northeast India for the day. In Delhi, IMD has forecast a generally cloudy sky with a spell of light rainfall today. In hockey, Indian women's team will take on the Netherlands in the first match of the second pool phase of FIH World Cup at Amstel Wien today. The match will start at 9:30 p.m. Indian time. Earlier, India advanced to the second round after playing out a goalless draw against England in the final Pool D match yesterday. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। सोमाली समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण किया। मालवाहक जहाज के चालक दल में 6 भारतीय शामिल। अमेरिका ने ईरानी सरकार के साथ उसके संबंधों का हवाला देते हुए हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टलफीन में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन और नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विचार विमर्श में ब्रिक्स देशों और व्यापक वैश्विक दक्षिण में डिजिटल परिवर्तन का समर्थन करने के लिए व्यवहारिक सहयोग को बढ़ाने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
2: पुणे में भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 17 से 21 अगस्त तक 5 दिवसीय ब्रिक्स सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT ट्रैक का आयोजन किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम की थीम है इनोवेट, कोऑपरेट और ट्रांसफॉर्म फॉर अ रेजिलियंट फ्यूचर। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और सुरक्षित, समावेशी तथा मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करना है। 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन आज 21 अगस्त को 12वीं ब्रिक्स कम्युनिकेशंस मिनिस्टर्स मीटिंग के साथ हो रहा है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान पुणे में आयोजित यह ICT ट्रैक डिजिटल तकनीक के माध्यम से समावेशी, टिकाऊ और लचीले विकास को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच बनकर उभरा है। आकाशवाणी समाचार पुणे से माधव जायभाई के साथ सुरेखा जोशी।
1: इसके अलावा ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चर्चा के मुख्य विषयों में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन, कौशल विकास, आसान यात्रा और पर्यटन में प्रौद्योगिकी और

0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शामिल किया जाएगा। ये बैठक 19 और 20 अगस्त को जयपुर में हुई ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की बैठक के बाद हो रही है। मंत्रियों की इस बैठक से ब्रिक्स देशों के बीच पर्यटन सहयोग और मजबूत होगा तथा पर्यटकों की आवाजाही और लोगों के बीच आपसी मेलजोल को बढ़ावा मिलेगा। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। जापान के रक्षा मंत्री ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की जानकारी दी और संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा संबंधों को और मजबूत करने पर सकारात्मक बातचीत हुई। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। इलाके में बढ़ती अस्थिरता के बीच सोमालिया और यमन के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री डकैती फिर से बढ़ने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट।
1: हाल की घटनाओं में सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास कैमरून के ध्वज वाले एमवी लुतुफ जहाज पर कब्जा और यमन के पास इरिट्रिया के ध्वज वाले सिबू एक टैंकर का अपहरण शामिल है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे, जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। खबरों के अनुसार 8 समुद्री लुटेरे जहाज को पुंटलैंड के डंगोरोयो जिले में गरमाल के पास नुगाल तट की ओर ले गए। सोमालिया के अधिकारियों ने बताया कि समुद्री लुटेरों ने अभी 6 जहाजों पर कब्जा कर रखा है। इनमें इस हफ्ते कब्जा किए गए 2 जहाज भी शामिल हैं। इन जहाजों पर 100 से ज्यादा चालक दल के सदस्य बंधक बनाए गए हैं। वर्ष के पहले 5 महीनों में सोमालिया के समुद्री क्षेत्रों और अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती से जुड़ी 17 से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गई। में कम से कम 3 वाणिज्यिक जहाजों और पारंपरिक लकड़ी के नौकायन पोत 5 धो का अपहरण शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। अमेरिका के वित्त विभाग के अनुसार यह नेटवर्क लेबनान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच वाणिज्यिक एयरलाइन उड़ानों से यात्रा करने वाले कुरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में पैसे भेजता था। इससे हिजबुल्ला को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर विदेशी मुद्रा हासिल करने और प्रतिबंधों से बचने का जरिया मिलता था। इस नए वर्गीकरण का उद्देश्य यह बताना है कि हिजबुल्ला ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की ओर से काम करता है और कोई स्वतंत्र संगठन नहीं है। इससे औपचारिक रूप से यह माना जाता है कि हिजबुल्ला के सैन्य अभियान, भारी सुरक्षा गतिविधियां और बड़े वित्तीय नेटवर्क IRGC के विस्तार के तौर पर काम करते हैं। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी सोकोटो राज्य में कल एक नदी में नाव पलटने से करीब 47 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार नाव में 80 से अधिक लोग सवार थे। ये लोग काम के लिए गुराव शहर के खेतों की ओर जा रहे थे। यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों में रूस के बड़े हवाई हमले में 16 लोगों की मौत की खबर है और कई अन्य घायल हुए हैं। हमले में अस्पताल, स्कूल, रिहायशी इमारतों और कई गोदामों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने हवाई सुरक्षा मजबूत करने के लिए दूसरे देशों से और पैट्रियट मिसाइलें देने की अपील की है। इस बीच यूक्रेन के हमलों का असर पड़ोसी देशों मोल्दोवा और रोमानिया तक फैल गया है। रोमानिया में यूक्रेन की सीमा के पास एक ड्रोन गिरकर जल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाम्बिया के राष्ट्रपति के दोबारा निर्वाचित होने पर हाकाइंडे हिचिलेमा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत जाम्बिया के

0: साथ अपनी साझेदारी को बहुत महत्व देता है। और अब खेल के मैदान की हलचल के साथ हैं शक्ति सिंह।
1: हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण मैच में आज अम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। कल पूल डी में अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारत दूसरे दौर में पहुंच गया। इस ड्रॉ की मदद से सलीमा टेटे की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम पूल डी में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने में सफल रही। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में उतरेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग टी की पुरुष डबल्स जोड़ी का मुकाबला चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई केंग और वान चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शूशियान से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो को अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। और एथलेटिक्स में लुसाने डायमंड लीग में आज भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पथिरागे एक बार फिर आमने सामने होंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। सोमाली समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण किया। मालवाहक जहाज के चालक दल में 6 भारतीय शामिल। अमरीका ने ईरानी सरकार के साथ उसके संबंधों का हवाला देते हुए हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: நேர்கள் கேட்டு மகிழ்ந்தது 100.1 மெகாஹெர்ட்ஸ் எஃப்எம் கோல்டு வழங்கிய சுகமான ராகங்கள். தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே கனகலதா. भारत आज पुणे में 12वें ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा. बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे. इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे. बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन. भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आज जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक शुरू होगी. दो दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे. बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने अंतर्राज्यीय डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ कर पंजाब और राजस्थान से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ये गिरफ्तारियां भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त कर्नल से 15 लाख रुपए से अधिक की कथित ठगी के मामले में की गई है. भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा. केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पत्र के साथ एक पोस्ट साझा किया. श्री वैष्णव ने बताया कि शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर के रास्ते जम्मू तवी और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी गई है. इससे संपर्क सुविधा बेहतर होगी और रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में अवसंरचना तथा संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों और शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों तथा विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई.
2: बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है. श्री मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही. उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को और मजबूत करने और उसे वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया. बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के सचिव तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. प्रिया साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से जुड़े महत्वपूर्ण जलमार्गों को मुख्य रूप से नियंत्रित कर रहा है और जल्द ही उन पर पूरा कब्जा कर लेगा. एक निजी रेडियो चैनल के साथ साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि अमरीका के लोगों को इस संघर्ष के कारण पेट्रोल और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिए जाएंगे और दावा किया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता काफी हद तक कम हो चुकी है. उन्होंने ईरान में बढ़ती महंगाई, कमजोर मुद्रा और सैन्य कर्मियों को वेतन न मिलने पर बढ़ते इसे दबाव का संकेत बताया है. मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवा चलने की संभावना व्यक्त की गई है. दिल्ली में आज बादल छाए रहने और हल्की वर्षा का

आसमान है। केरलम के कई तटीय क्षेत्रों में आज ऊंची लहरों से समुद्र का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने चेतावनी दी है कि तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, आलप्पुड़ा, एर्नाकुलम, मालप्पुरम, कोषिकोड, कन्नूर और कासरगोड के तटों पर आज सुबह 11:30 बजे तक 1 से 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की संभावना है। बैडमिंटन में आज नई दिल्ली में हो रही BWF विश्व चैंपियनशिप 2026 में भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला चीन के तीसरे वरीयता प्राप्त लियांग वई खेंग और वांग चांग से होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: மெல்லிசை கேட்டீர்கள். தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே கனகலதா. केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक चल रही है। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि, सूचना तथा संचार

0: प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीले डिजिटल बुनियादी ढांचा में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें एक पहल प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले कई वर्ष में इस योजना के तहत बजट आवंटन में काफी वृद्धि हुई है। योजना के अंतर्गत 2024-25 में वास्तविक खर्च लगभग 5,400 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2026-27 में बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। सरकार ने इंडिया पोस्ट के नाम पर ऑनलाइन प्रसारित हो रहे उस फर्जी सर्वेक्षण का खंडन किया है, जिसमें 20,000 रुपए का नकद इनाम देने का दावा कर लोगों से उनकी निजी जानकारी साझा करने के लिए कहा जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये सर्वेक्षण फर्जी है। इसके जरिए लोगों को फंसाकर उनकी जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। प्रादेशिक सेना ने राष्ट्रीय स्तर पर हैकाथॉन टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य रक्षा, साइबर सुरक्षा और सूचना के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए नए समाधान विकसित करना है। हैकाथॉन की शुरुआत साइबर पीस के सहयोग से की गई है। इसके तहत शिक्षा जगत, उद्योग, अनुसंधान संस्थाओं, सरकारी संगठनों और सशस्त्र बलों की तकनीकी प्रतिभाओं को एक साथ लाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2025 के अपने फैसले में संशोधन करते हुए प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं में शामिल होने के लिए विधि स्नातकों के लिए 3 वर्ष की वकालत की अनिवार्यता की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसे और के विनोद चंद्रन की पीठ ने 2-1 से निर्णय लिया और पुनः समीक्षा से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। इससे संपर्क सुविधा बेहतर होगी और रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज सुबह इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में चिकित्सकीय जांच के बाद रावलपिंडी के अदियाला जेल वापस भेज दिया गया। उन्हें आधी रात के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया था। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के भीतर अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया था। इमरान खान को भ्रष्टाचार समेत कई मामलों में 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे रावलपिंडी की अदियाला जेल में है। ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। अमरीका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिन में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। मुंबई के कुर्ला पूर्व इलाके में आज तड़के एक क्रेन के घरों पर गिर जाने से 8 लोग घायल हो गए। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने बताया है कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया। सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,538 जबकि निफ्टी 24,231 पर था। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार अम्स्टरडैम में रात 9:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Valsa Williams. India and Brazil have signed a memorandum of understanding to deepen cooperation in telecommunications and information and communication technologies, ICTs, on the sidelines of the BRICS ICT track meeting. Union Minister

0: अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जवानों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि इससे पहले एसएसबी के कार्यक्रमों में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इनमें शामिल होना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीमा सुरक्षा के लिए पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है। और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा बना, सीमा पर बाड़ को पूरा लगा दिया जाए।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठ रोकने के लिए ममता बनर्जी से बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने बंगाल के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर करीब 189 करोड़ रुपए की लागत से एसएसपी के कई शिविरों के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से सीमा सुरक्षा में तैनात जवानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दूरसंचार विभाग ने बताया है कि यह समझौता ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग हुआ। दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। एक रिपोर्ट।
2: पुणे में आयोजित 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक से इतर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ब्राजील के संचार मंत्री फेडरिको डी सिक्वेरा फिल्हो के बीच हुआ। ये समझौता ज्ञापन दूरसंचार, डिजिटल बुनियादी ढांचे और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में व्यवस्थित सहयोग के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों में समावेशी, सुरक्षित और मजबूत डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना है। भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के संदर्भ में ये समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मानकों के क्षेत्र में अधिक सहयोग की वकालत करता रहा है। भारत ब्राजील समझौता दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी का भी एक हिस्सा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक जारी है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीली डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। उद्घाटन भाषण में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया की प्रतिबद्धता से प्रेरित लचीले, विश्वसनीय, नवोन्मेषी, सशक्त और समावेशी भविष्य के लिए भारत के दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की।
3: पिछले एक दशक में ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है, जो लगभग आधी मानवता और प्रतिभा तथा नवाचार के अपार भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारा ध्यान संस्थाओं के निर्माण से आगे बढ़कर सहयोगात्मक पहलों को लागू करने की ओर विकसित होना चाहिए।
4: इम्प्लीमेंटिंग कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स।
0: ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर में हो रही है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों का स्वागत किया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राजस्थान भारत की सदियों पुरानी विरासत, जीवंत संस्कृति और अद्वितीय आतिथ्य सत्कार का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अतिथि अपने प्रवास के दौरान राज्य की परंपराओं की गर्मजोशी और समृद्ध का अनुभव करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए

0: ये अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसे और के विनोद चंद्रन की पीठ ने पुनः समीक्षा को खारिज करते हुए 2-1 से ये फैसला दिया। एक रिपोर्ट।
1: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष से दीपेंद्र कुमार।
0: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है।
2: झारखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी सीजीएल और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी को आगामी 7 सितम्बर तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि विज्ञापन और नियुक्तियों को अचानक रद्द करने का सरकारी फैसला नियमों के अनुकूल नहीं है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर तय की है। इससे पहले कल जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर और पूरे एशिया के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। सिंगापुर में भारत सिंगापुर कारोबारी मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत की मजबूत आर्थिक विकास यात्रा, निवेश के अवसरों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कारोबार सुगम बनाने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री गोयल ने सिंगापुर के विदेश मामलों और व्यापार तथा उद्योग राज्य मंत्री गन सियो ह्वांग तथा अन्य गणमान्य लोगों से भी मुलाकात की। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। नई सेवा से लोगों को यात्रा का एक और विकल्प मिलेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के उधमपुर स्टेशन पर रुकने की सुविधा का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। इसे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। नई वंदे भारत उन यात्रियों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जिन्हें नौकरी, कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी कामों के सिलसिले में जम्मू श्रीनगर आना जाना पड़ता है। अब उन्हें इस सेवा का लाभ लेने के लिए पहले जम्मू या किसी अन्य स्टेशन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधमपुर से ही जम्मू से श्रीनगर तक की यात्रा की जा सकेगी। रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान को विश्व में इतिहास के सबसे बड़े समन्वित आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ेगा। एक साक्षात्कार में श्री बेसेंट ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों पर द्वितीय प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के आर्थिक उपायों को ध्वस्त करने की धमकी दी थी। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इन आर्थिक धमकियों को खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में अराक्ची ने कहा कि ये धमकी अमरीकी जनता का अपने घरेलू वित्तीय समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से जुड़े महत्वपूर्ण जलमार्गों को मुख्य रूप से नियंत्रित कर रहा है और जल्द ही उन पर पूरा कब्जा कर लेगा। एक रिपोर्ट।
4: एक निजी रेडियो चैनल के साथ साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि अमरीका के लोगों को इस संघर्ष के कारण पेट्रोल और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिए जाएंगे और दावा किया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता काफी हद तक कम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ईरान में बढ़ती महंगाई, कमजोर मुद्रा और सैन्य कर्मियों को वेतन नहीं मिलना उस पर बढ़ते दबाव के संकेत हैं। श्री ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान

0: ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो वह इसराइल और पश्चिम एशिया के अन्य देशों पर हमले कर सकता था। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिसाइलों ने सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन को निशाना बनाया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: अमेरिका ने क्यूबा के निर्माण, खनन और धातु क्षेत्रों से जुड़ी 9 सरकारी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही क्यूबा की सरकारी कंपनियों के साथ कारोबार करने वाले अमेरिकी नागरिकों पर भी पाबंदियां कड़ी कर दी गई हैं। क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो की 100वीं जयंती से जुड़े समारोहों से वापस आने वाले नागरिकों को अमेरिका म्यामी हवाई अड्डे पर कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है और कई नदियां उफान पर हैं।
2: मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आज निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर समेत 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन में बारिश का असर धीरे धीरे मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: भारत के त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने असाधारण दृढ़ता और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले सेट में पिछड़ने के बाद वापसी की और चौथी वरीयता प्राप्त चीन की जिया यीफेन और झांगशू शियान को हराया। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। ये 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में भारत का पहला पदक होगा। भारतीय महिला टीम आज अम्स्टरडैम में एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में मेजबान नीदरलैंड से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,544 जबकि निफ्टी 24,236 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ஆகாஷ்வாணி சென்னை 100.1 MHz FM கோல்ட் அலைவரிசை.

தரகடதும்.

0: समयम।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने उनसे लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभा, कंपनियों और निवेश के आकर्षण का केंद्र बन सकता है। उन्होंने इसके लिए देश में अनुकूल इकोसिस्टम की जरूरत पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल मुख्यालय में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीमा सुरक्षा मजबूत करने के लिए राज्य सरकार पूरा सहयोग कर रही है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता।
1: श्री शाह ने आरोप लगाया कि घुसपैठ रोकने के लिए ममता बनर्जी से बार बार अनुरोध के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा को उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है, साथ ही ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र, जिसका वर्तमान अनुमान लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर है, उन्होंने कहा कि देश की प्राथमिकता वैश्विक स्वास्थ्य सेवा बाजारों के लिए प्रौद्योगिकियों को डिजाइन, विकसित, निर्मित और निर्यात करना होना चाहिए। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता किया है। ब्रिक्स ICT बैठक से अलग हुआ यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। इस बीच संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं

0: ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीली डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। उधर जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की भी बैठक हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर और पूरे एशिया के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया है। सिंगापुर में भारत सिंगापुर कारोबारी मंच में उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक विकास यात्रा, निवेश के अवसरों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कारोबार सुगम बनाने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस संबंध में अपने पिछले साल के फैसले में संशोधन किया है। न्यायालय की पीठ ने पुनर्समीक्षा खारिज करते हुए बहुमत से ये फैसला दिया। एक रिपोर्ट।
1: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष से दीपेंद्र कुमार।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला चीन के लियांग और वांग की जोड़ी से होगा। मैच शाम 4:30 से खेला जाएगा। इससे पहले त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। भारतीय जोड़ी ने 4थी वरीयता प्राप्त चीन की जिया यी फैन और झांग शूशियान को बेहद संघर्षपूर्ण मुकाबले में पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi today interacted with Chief Executive Officers, CEOs and founders of 20 space startups in New Delhi. The Prime Minister called for wider applications of space technology to improve the lives of people. Mr. Modi noted that the country's space sector can become a magnet for global talent, companies and investment and suggested creating an ecosystem and an environment where, when the world thinks of space, it looks towards India. Emphasizing greater collaboration between the space industry and other social development sectors, the Prime Minister encouraged greater collaboration with Atal Tinkering Labs to nurture curiosity and interest among young minds for space. Mr. Modi also congratulated the leaders of the space sector for showing courage and taking the lead in a new area. Union Home Minister Amit Shah inaugurated and laid the foundation stones for several projects worth around 189 crore rupees at the headquarters of the Sashastra Seema Bal SSB in Siliguri, West Bengal today. Mr. Shah stated that since the BJP government came to power at the centre, the welfare of personnel responsible for border security has been given utmost priority. He highlighted that the SSB is performing the challenging task of guarding open borders with countries like Nepal and Bhutan, calling it one of the toughest duties. Mr. Shah is addressing a gathering after inaugurating an exhibition on Bharatiya Nyaya Samhita in Siliguri. Health and Family Welfare Minister J.P. Nadda today reviewed the prevailing situation and preparedness for H1N1 influenza in the country, with particular focus on the national capital. The ministry informed that Mr. Nadda emphasized the need for continued vigilance, robust surveillance and proactive preparedness with close monitoring of influenza trends. He also emphasized public awareness and preventive health practices, including respiratory hygiene and hand hygiene, and advised individuals with persistent or severe respiratory symptoms, breathing difficulty or other warning signs to seek medical advice promptly. The government today signed a $230 million

0: நிகழ்ச்சியில் நிறைவாக.
1: நமஸ்கார், மை ஹூ கைலாஷ் கேர் ஓர் ஆகாஷ்வாணி கே சபி ஸ்ரோதாவோ கோ மேரா பாரம்பார் பிரணாம் ஓர் பாரத் கி சேனா கோ சமர்ப்பித் யே மேரா கீத் பாரதிய சேனா ஜோ தீனோ சேனாவோ கோ சமர்ப்பித் ஹை ஹர் தேஷ்வாசி கோ சமர்ப்பித் ஹை ததா பாரத் கே ஹர் சைனிக் கோ சமர்ப்பித் ஹை பேராமிலிட்டரி கே அர்த சைனிக் பலோ கே ஹர் சைனிக் கோ சமர்ப்பித் ஹை ரக்ஷா மந்த்ராலய சே லேகர் தேஷ் கே एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है. हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है. रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं. मैं हूं आपका कैलाश खेर.
2: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना. जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना. हर संकट का समाधान है भारतीय सेना. भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना.

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: That format, along with the required documents and certifications, should be forwarded through proper channel to the Director HC, Office of the Development Commissioner Handicrafts, Shilp Bhavan, Plot Number 8, Nelson Mandela Mark, Vasant Kunj, New Delhi, 110070, within 60 days of these advertisements' publication in the Employment News. Incomplete or late applications, or those not routed through proper channels, will not be considered. For application details and their performer, kindly visit the website at www.handicrafts.nic.in. I repeat, it is www.handicrafts.nic.in. The Ministry of Housing and Urban Affairs, MOHUA, Government of India, is inviting applications for the post of an Executive Director in the Building Materials and Technology Promotion Council, BMTPC. The post is in Level 14 as per the 7 CPC and may be filled through direct recruitment, failing which by deputation and, if needed, by contract appointment. BMTPC's mandate includes promoting innovative and emerging building materials and construction technologies, acting as training and resource center, supporting disaster mitigation and reconstruction, and providing project management and consultancy service for housing projects under various central and state schemes. For detailed eligibility criteria, application procedures, and further information, candidates should visit the official website of the Ministry of Housing and Urban Affairs, that is at www.mohua.gov.in, and must apply within 30 days from the date of release of this advertisement in the Employment News. I repeat the website, kindly refer to www.mohua.gov.in. Krishi Vigyan Kendra, Barmer 1, Danta, managed by the Society to Uplift Rural Economy, SURE, invites applications for two vacancies, stenographer grade 3 unreserved, pay level 4, and programmer assistant, lab technician, T4 unreserved, pay level 6. For stenographer, candidates must have passed 12th class or equivalent and demonstrate proficiency in transcribing a dictation test in English or Hindi on computer. For programmer assistant, candidates need a bachelor's degree in agriculture or relevant sciences with 2 years' experience preferred. The upper age limit is 27 years for stenographer and 30 years for programmer assistant, with relaxations as per Government of India rules. Applicants should send their completed application forms at www.barmer1.kvk2.in. I repeat, it is www.barmer1.kvk2.in. The last date to apply is within 30 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. And now we have the Employment News in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, दीनदयाल पोत अधिकरण आमंत्रित कर रहा है संविदा के आधार पर इन पदों को भरने के लिए आवेदन। ड्रेजर सहायक 2 पद, सहायक जल सर्वेक्षक 2 पद, वैज्ञानिक सहायक 2 पद तथा समुद्री सहायक 16 पद। पात्रता, शैक्षिक अर्हता, अनुभव, पारिश्रमिक, संविदा के नियम और शर्तों तथा अन्य विस्तृत जानकारी के लिए देखिए दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट www.deendayalport.gov.in। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली विश्वविद्यालय नई दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विभाग और विषयों के नाम हैं वाणिज्य कुलपद 12, अर्थशास्त्र कुलपद 3, गणित कुलपद 1, कुल मिलाकर 16 पद रिक्त हैं। शारीरिक शिक्षा निदेशक का 1 पद भी रिक्त है। योग्यता, अनुभव, स्क्रीनिंग, दिशा निर्देश और सांकेतिक प्रोफार्मा आदि के बारे में विवरण देख सकते हैं आप कॉलेज की वेबसाइट पर, जिसका पता है www.src.edu और विश्वविद्यालय की वेबसाइट

0: पर भी ये विवरण उपलब्ध है। वेबसाइट है www.du.ac.in। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में ये पद रिक्त हैं। उप CVO एक पद, प्रबंधक सतर्कता एक पद और पर्यवेक्षक सतर्कता दो पद। विस्तृत विज्ञापन के लिए देखिए वेबसाइट www.spmcil.com। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रक केंद्र में सलाहकार एंटोमोलॉजी का एक पद रिक्त है। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विस्तृत नियम, शर्तों, योग्यता आदि की जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रक केंद्र की वेबसाइट www.ncvbdc.mohfw.gov.in। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान में इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सहायक निदेशक दो पद, लेखा अधिकारी एक पद तथा सहायक ग्रेड वन एक पद। पात्रता संबंधी विस्तृत शर्तों और निर्धारित प्रपत्र की जानकारी आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर www.ccsniam.gov.in। भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय आमंत्रित करता है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। ऑफसेट मशीनमैन सामान्य, केंद्रीय सेवा समूह ख, अराजपत्रित। रिक्तियों की संख्या दो है। आवेदन हेतु पात्रता की शर्तों और निर्धारित अन्य शर्तों की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट caomod.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: हम अपनी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा इंतजार में गुजार देते हैं, कभी किसी बेहतर कल का, कभी किसी मुकम्मल रिश्ते का, कभी किसी ऐसे ख्वाब का जो अभी पूरा होना बाकी है। हम बार बार अपने दिल से कहते हैं, अभी नहीं फिर कभी, मगर जिंदगी की किसी आने वाले लम्हे का नाम नहीं है। जिंदगी तो वही है जो इस वक्त हमारी सांसों में उतर रही है, इसलिए ठहरिए। बारिश हो रही हो तो उसे सिर्फ देखिए नहीं, महसूस कीजिए। चाय की प्याली हाथ में हो तो उसे जल्दी जल्दी खत्म मत कीजिए, उसकी गर्माहट को हथेलियों में ठहरने दीजिए। जिस शख्स से मोहब्बत है उसकी आंखों में थोड़ी देर और देखिए। बच्चों की हंसी को मोबाइल के कैमरे में कैद करने से पहले उसे अपने दिल में कैद कर लीजिए। जिंदगी को हर वक्त बेहतर बनाने की कोशिश में कहीं ऐसा ना हो कि हम उसे जीना ही भूल जाएं।
1: That's very right, Mukesh. And indeed, this beautiful song by Kishore Kumar, ये भी हम लोग से शायद यही कुछ कहना चाहते हैं, that we should make the most of the moment that we are living. क्योंकि ये पल भी तो हमसे ही जिंदा है, ये बहुत ही अजीम शायरा ने कहा था. And I think it's so right जो आपने शुरू में कहा, that we keep on waiting for that one moment that is to arrive. And we always say, no, this is not the right time, this is not the right time. Well, indeed, this moment is everything that is what matters. And I think this breath, this heartbeat, this ordinary, imperfect, yet beautiful moment is yours. Hold it gently, but very tightly also. For one day, you will look back and realize that the life that you were waiting

0: for was quietly happening all along. तो इसी नोट पे, इसी पॉजिटिविटी के नोट पे मुकेश और सायरा का इस्तकबाल हम लोग का आप जो है कबूल कीजिए. वेलकम टू आवर शो परिक्रमा.
1: बिल्कुल, नमस्कार. स्टूडियो में आपका स्वागत है और स्वागत है न्यूज मैगजीन परिक्रमा में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार. श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है उनके पास खास. इसके अलावा खेल जगत की गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि या जयंती. तो श्रोताओं, परिक्रमा की संघ के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुश्ताबा. सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार.
0: नमस्कार मुकेश, एंड सिंस यू हैव ऑलरेडी टोल्ड व्हाट टू लुक फॉरवर्ड टू इन टुडेज़ शो, विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस.
1: जी बिल्कुल. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया.
0: India and Brazil sign MOU on sidelines of BRICS ICT meeting in Pune to advance digital innovation and cooperation in emerging technologies.
1: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि घटाकर 1 वर्ष की.
0: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal reiterates India's commitment to deepening economic partnerships with Singapore, holds meeting with Trade and Industry Minister of Singapore.
1: अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी. ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है.
0: एंड इंडियन डुओ ऑफ ट्रीसा जॉरी एंड गायत्री गोपीचंद एडवांस टू वुमेन्स डबल्स सेमीफाइनल्स ऑफ BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स. हस्ब दस्तूर हम लोग जो है शुरू करते हैं परिक्रमा विद आवर स्पेशल सेगमेंट डेटलाइन इंडिया. एंड मुकेश, आई थिंक वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंटरेस्टिंग येट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इट कंसर्न्स द यूथ विच फॉर्म्स द मेजर चंक ऑफ आवर कंट्री एंड हाउ द यूथ इज नाउ एक्चुअली चेंजिंग द होल यू कैन से डेमोग्राफी एंड द वे पीपल लुक आउट फॉर लाइवलीहुड बिकॉज द यूथ इज नो मोर सीकिंग जॉब्स, इट्स इनफैक्ट क्रिएटिंग जॉब्स. तो हम लोग का जो स्टार्टअप इंडिया जो शुरू हुआ उसके अंतर्गत भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स पैदा हुए एंड दे आर स्टिल ब्लूमिंग. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल हाउ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स आर टेकिंग होम ग्रोन आइडियाज टू द वर्ल्ड. सो वेल, टुडे इज वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर डे, अ डे दैट सेलिब्रेट्स द ड्रीम्स, द रिस्क एंड चेंजेस ऑफ द पीपल हु टर्न आइडियाज इन टू एक्शन एंड चैलेंजेस इन टू अपॉर्चुनिटीज. एंड वॉट बेटर डे टू एक्सप्लोर हाउ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स आर टेकिंग homegrown ideas from technology and startups to traditional crafts, GI tagged products, fashion and food to audiences across the world.
1: बिल्कुल, भारत के एक छोटे से शहर में जन्मे एक छोटे से विचार से लेकर वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने वाले ब्रांड तक का सफर अब सिर्फ मेड इन इंडिया तक सीमित नहीं है, ये भारत में बना और दुनिया भर में सराहा गया सफर है. आज हम लोकल से ग्लोबल बनने के उसी रोमांचक सफर के बारे में जानेंगे.
0: But before we move further, Mukesh, here's a question to get us started. Well, when you hear the words made in India, what's the first thing that comes to your mind? Is it Indian spices? Is it the handlooms? Or maybe just UPI? Well, a startup. Well, maybe a beautifully crafted sari or even a premium Indian spirit.
1: बिल्कुल, भारतीय उत्पादों का इस्तेमाल अब सिर्फ देश के अंदर ही नहीं हो रहा है बल्कि दुनिया भर में उन्हें पहचाना और सराहा भी जा रहा है और उनकी मांग भी बढ़ रही है. आज हम बात कर रहे हैं लोकल से ग्लोबल की, यानी भारतीय उद्यमी कैसे देश में बने उत्पादों को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं.
0: And this is not just a story about exports, Mukesh. It's also about how Indian entrepreneurs are taking our technology, the craftsmanship, the culture, the flavors and business ideas and turning them into global success stories. Let's begin with something that millions of Indians use every day, that is UPI.
1: बिल्कुल सारा, भारत में शुरू हुई डिजिटल भुगतान की क्रांति अब एक ऐसा मॉडल बन गई है जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान खींचा है. इससे मिलने वाली बड़ी सीख ये है कि भारत अब सिर्फ प्रौद्योगिकी ही नहीं अपना रहा बल्कि हम एक ऐसी डिजिटल अवसंरचना बना रहे हैं जो दूसरे देशों की वित्तीय प्रौद्योगिकी के बारे में सोच को प्रभावित कर सकती है.
0: That's right, Mukesh, and perhaps that's the beauty of India's entrepreneurial ecosystem. We have a huge domestic market, millions of digital users and entrepreneurs who are constantly solving problems at an enormous scale.
1: और फिर भारत की सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यानी SaaS की कहानी है.

0: आईटी कंपनियां तेजी से भारत में ही दुनिया के लिए सॉफ्टवेयर बना रही हैं।
1: That's right, and in fact, I think our software engineers and architects of this industry are known globally to make a mark. And the advantage isn't simply a lower cost anymore. India has a massive pool of engineers, developers, designers, and product managers who understand the global customer.
0: बिल्कुल सायरा, उस बदलाव के बारे में सोचिए। पहली वैश्विक कंपनियां अक्सर भारत को काम आउटसोर्स करने की जगह के तौर पर देखती थीं, और आज भारतीय उद्यमी कह रहे हैं हम खुद उत्पाद बनाएंगे और उसे दुनिया भर में बेचेंगे।
1: That's right, and I think that is a huge shift, from being the back office to now becoming the innovation centers.
0: बिल्कुल।
1: And of course, अब जो artificial intelligence का, with the advent of AI, cloud computing and even deep tech is moving so quickly, Mukesh, that opportunities are only getting bigger and bigger.
0: बिल्कुल, अब कोड से हटकर कला और कौशल की बात करते हैं, क्योंकि भारत की वैश्विक कहानी

0: intelligence ka, you know, with the advent of AI, cloud computing and even deep tech is moving so quickly, Mukesh, that opportunities are only getting bigger and bigger.
1: बिल्कुल, अब कोड से हटकर कला और कौशल की बात करते हैं, क्योंकि भारत की वैश्विक कहानी सिर्फ स्टार्टअप और तकनीक के बारे में नहीं है.
0: That's right. और मेरे ख्याल से आए दिन हम लोग जो है अपने इंडिया की बहुत से कुछ ऐसे, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे खाने हो, चाहे हैंडलूम के कुछ प्रोडक्ट्स हो,
1: ढेर सारे उत्पाद
0: जिनके हम लोग ये न्यूज़ सुनते हैं आए दिन कि उनको GI टैग मिला. यस, द जियोग्राफिकल इंडिकेशन. GI टैग टेल्स कंज्यूमर्स दैट अ प्रोडक्ट हैज अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल ओरिजिन एंड इट पोजेसेस क्वालिटीज, रेप्यूटेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर लिंक्ड टू दैट पर्टिकुलर प्लेस.
1: और भारत में ऐसे कई तरह के शानदार उत्पाद मौजूद हैं. दार्जिलिंग की चाय, बनारसी साड़ियां, कांचीपुरम सिल्क, पश्मीना, मधुबनी पेंटिंग, कश्मीरी केसर और तिरुपति लड्डू के बारे में सोचिए. इन सभी की अपनी एक कहानी है जो किसी खास इलाके से जुड़ी है.
0: That's very right. And if I'm not wrong, मेरे ख्याल से recently कोल्हापुरी चप्पल को भी शायद GI टैग लगा ना, कि वो कोल्हापुर की है, because some international brand was probably trying to hijack that. And well, that story can become a global advantage also. Just imagine buying a beautifully woven Indian textile abroad. You're not just buying that fabric, you're actually buying centuries of craftsmanship, a community's skills and the cultural identity of a region. तो जैसे कि आपने जिक्र किया कि बनारस की साड़ी जैसे, for example, आप खुद सोचिए कि जब वो साड़ी को आप हाथ में लेते हैं, अगर आप में थोड़ा सा भी शौक के साथ साथ ज़ौक है, then you will think over that the product that is in your hands, it's actually a labor of love. और ये कितनी जनरेशन से पास डाउन हुआ है उन बुनकरों के. सो यू नो, समटाइम्स वी जस्ट लुक एट द प्राइस टैग, बट दैट प्राइस टैग इज प्रॉब्ली नॉट मेयरली ऑफ द प्रोडक्ट दैट यू आर होल्डिंग, बट ऑल्सो ऑफ द क्राफ्ट्समैनशिप, द आर्टिस्ट्री दैट लाइज बिहाइंड इट, इजंट इट?
1: बिल्कुल. और यहीं पर GI टैग वाली उत्पादों में बहुत अधिक संभावनाएं हैं. ये भारतीय कारीगरों और उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में असली क्षेत्रीय उत्पादों की अलग पहचान बनाने में सहायता कर सकते हैं.
0: और मुकेश, जब हम लोग अपने प्रोडक्ट्स की बात ही कर रहे हैं, हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स की, देन ऑफ कोर्स द कन्वर्सेशन विल नॉट बी कंप्लीट अगर हम लोग अपने फूड प्रोडक्ट्स की बात ना करें, खास तौर से मसाले, चाय, कॉफी, इजंट इट?
1: बिल्कुल सही कहा. भारतीय मसालों, चाय, कॉफी, अचार, स्नैक्स और क्षेत्रीय व्यंजनों की लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय प्रशंसक भी रहे हैं.
0: That's right. I remember clearly when Bill Clinton came and he had the samosa. तो वो एकदम मंत्रमुग्ध हो गए थे. So you know, for many international parties, the samosa became a regular.
1: और एक किसी देश के प्रधानमंत्री को जब नरेंद्र मोदी जी ने पानी के बताशे खिलाए.
0: That's right. और आप एकदम सही लफ्ज यूज कर, हम लोग भी पानी के बताशे ही बोलते हैं कुछ जगह उसको.
1: गोलगप्पे बोलते हैं,
0: गोलगप्पे,
1: पानी पूरी
0: बोलते हैं, कुछ लोग पुचका भी कहते हैं, इज इट? तो नाम अलग अलग हो सकते हैं, बट ऑफ कोर्स अगर देखा जाए, इट्स सच अ सिंपल थिंग, यू नो, बट एक पता नहीं, द मोमेंट यू पॉप इट इनटू योर माउथ, यू गेट अ बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स एंड दैट गिव्स यू हाई. Absolutely, बहुत ज्यादा. एक मतलब टपरी पे भी वो आपको दिखेगा और एक मॉल में भी मिलेगा.
1: मुंह में पानी आता
0: है. That's so very right. So well, something interesting is happening in the India of today. Indian flavors are moving beyond Indian communities abroad and entering the mainstream global food conversation.
1: बिल्कुल, हल्दी, इलायची, मिर्च मसाला और चाय दुनिया भर की रसोई में जाने पहचाने वाले शब्द बन गए हैं.
0: इनफैक्ट अगर जो आप हल्दी, इलायची, स्पाइसेस की बात करें, ये तो मतलब सदियों से, सेंचुरी से इनकी वाहवाही तो हो ही रही है. बट जैसे आपने पानीपुरी की बात की, रिसेंटली मास्टर शेफ में यू वोंट बिलीव शी मेड राज कचौरी
1: जी,
0: एंड द वाइट्स पीपल दे वर एब्सोल्युटली ब्लोन ओवर बाय द बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स इनटू देयर माउथ के राज कचौरी है क्या चीज. जैसे उसको आप फोड़ते हैं, उसके अंदर खाली खाना नहीं निकलता, लग रहा है देयर इज सो मेनी, यू नो, एन अमलगमेशन ऑफ सो मेनी फ्लेवर्स. एंड वेल, लेट्स रैप अप today's discussion. And one thing is clear, Mukesh, that India's entrepreneurial spirit is taking our ideas, innovations, traditions and products far beyond our borders. From UPI and Indian startups to GI tagged crafts, fashion, food and homegrown brands, India is showing the world that our local stories can have, and in fact they do have, global appeal.
1: तो इस विश्व उद्यमी दिवस पर आइए ना सिर्फ उन व्यवसायों का जश्न मनाएं जो ये पहले ही ग्लोबल हो चुके हैं, बल्कि उन अनगिनत भारतीय विचारों का भी जो उस सफर पर निकलने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि असली ग्लोबल सक्सेस स्टोरी एक साधारण से विचार से शुरू हो सकती है, और वो भी यहीं भारत में.

0: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। तो इस क्रम में सबसे पहले चलते हैं उत्तराखंड। रक्षाबंधन का पर्व नजदीक आते ही उत्तराखंड में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं की बनाई जा रही राखियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से ये महिलाएं राखी को स्वरोजगार का माध्यम बनाकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। इस बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता साक्षी सिंह।
1: देहरादून जिले के रायपुर, सहसपुर और डोईवाला विकास खंडों में समूह की महिलाओं द्वारा ऊन, क्रोशिया, मौली के धागे और रिबन सहित विभिन्न सामग्रियों से आकर्षक राखियां तैयार की जा रही हैं। रायपुर के मालदेवता क्षेत्र की सास बहू लीला रावत और अलका रावत इस कारोबार में पहचान बना रही हैं। दोनों ने इस वर्ष 2000 से अधिक राखियां तैयार करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें करीब 1500 राखियां तैयार हो चुकी है। पिछले वर्ष उन्होंने 1200 राखियां बेचकर करीब 25000 रुपए का मुनाफा कमाया था। इस बार उन्हें स्थानीय बाजार के साथ ऑनलाइन माध्यम से भी ऑर्डर मिल रहे हैं। अलका रावत ने पिछले साल प्राइवेट नौकरी छोड़कर अपनी सास लीला के साथ स्वरोजगार की राह चुनी। दोनों ने मालदेवता क्षेत्र में एक दुकान शुरू की। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से शुरू की गई स्वरोजगार के माध्यम से वे राखियों के साथ अन्य हस्त निर्मित और स्थानीय उत्पादों का भी कारोबार कर रही हैं।
2: उनके अनुसार समूह से जुड़ने के बाद उन्हें आय का बेहतर अवसर मिला है।
3: मैं 2016 से इस समूह से जुड़ी हूं, NRLM से, और यहां से हमें बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। गवर्नमेंट की तरफ से, NRLM की तरफ से महिलाओं के लिए रोजगार के अन्य अन्य साधन आते हैं, नई नई स्कीमें आती रहती हैं, और हम हर सारी महिलाएं जो है इससे काफी लाभ उठाती हैं, और मैं भी जो है तो इससे बहुत अच्छा मुझे फायदा मिल रहा है और हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं।
4: मैंने ये अपना हैंडमेड राखिया का स्टार्ट किया था, हैंडमेड राखिया बनाते हैं, तो इसलिए हम हैंडमेड राखियों से मुझे बहुत अच्छा लाभ हुआ था पिछले साल, इसलिए मैंने इस बार 2 गुना राखियां बनाई है। पिछले बार जितना बनाया था उसका 2 गुना राखियां इस बार बनाई है।
1: वहीं सहसपुर और डोईवाला की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी करीब 100 महिलाएं भी विभिन्न डिजाइन की राखियां तैयार कर बाजार में बेच रही हैं। जिला प्रशासन की ओर से महिलाओं को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए 24 से 27 अगस्त तक उत्तराखंड सचिवालय में 5 स्टॉल लगाए जाएंगे। इसके अलावा देहरादून के प्रमुख मॉल में भी राखियों के स्टॉल लगाए जाने की तैयारी है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी देहरादून से साक्षी सिंह।
5: And now from Dehradun, we go down south to God's own country, Kerala. Well, Sri Chitra Thirunal Institute for Medical Sciences and Technology under the Union Ministry of Science and Technology, Thiruvananthapuram, in collaboration with tech firm Skillvery, is gearing up to commercially release Xtend, a groundbreaking virtual reality-based medical device set to revolutionize post-stroke rehabilitation. Let's hear more from our Thiruvananthapuram correspondent.
6: Stroke remains one of the leading causes of long-term disability worldwide, affecting over 13 million people each year, with 80% residing in low- and middle-income nations. Up to 80% of survivors suffer from upper limb motor impairments, and fewer than 30% manage to fully regain their independence. Traditional rehabilitation techniques are often expensive, labor-intensive, and fail to keep patients consistently motivated due to repetitive routines. Xtend solves this problem by turning tedious therapies into immersive, data-driven, and virtual experiences that encourage long-term practice. Categorized as a software as a medical device, Xtend stands out because it operates completely without external body sensors or complex wiring, making it fully portable and convenient. The platform features 18 targeted physiotherapy exercises covering full kinetic chain from shoulders to fingers. To make therapy more relatable and enjoyable, it incorporates gamified simulations of daily activities like brushing teeth, eating, making phone calls, and gardening. The device easily changes the rehabilitation from hospital settings directly to patients' homes. After initial setup and guidance by a therapist, patients can continue their exercises independently, while real-time data is transmitted remotely to doctors and physiotherapists. Currently undergoing final clinical trials and regulatory approval processes, Xtend is expected to hit the commercial market soon. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
0: और अब चलते हैं उत्तर प्रदेश। बेतवा नदी पर बना झांसी का परीछा बांध अब वैश्विक विरासत का हिस्सा बन गया है। इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर्स के रूप में मान्यता दी है। तो सुनते हैं रिपोर्ट।
7: प्रमुख सचिव सिंचाई और जल संसाधन अनिल गर्ग ने बताया कि परीछा बांध को फ्रांस के मार्सेई में 14 अक्टूबर को

0: होने वाली 26वीं ICID इंटरनेशनल कांग्रेस और 77वीं इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग के दौरान WHIS अवार्ड 26 दिया जाएगा। इसके लिए विभाग के अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। ये बांध करीब 140 साल से बुंदेलखंड की सिंचाई व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये बेतवा नहर प्रणाली का मुख्य हिस्सा है। इस नहर व्यवस्था से बुंदेलखंड के सूखे क्षेत्रों में खेती के लिए पानी पहुंचाया जाता है। पारिछा बांध करीब 1174 मीटर लंबा है और इसकी ऊंचाई नदी तल से करीब 16.8 मीटर है। इसमें 318 स्टील के गेट लगाए गए हैं। इन गेटों की मदद से पानी को रोकने और जरूरत के हिसाब से छोड़ने का काम किया जाता है। वहीं पिछले कुछ वर्षों में इसकी पानी जमा करने की क्षमता भी बढ़ाई गई है। इस बांध से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में सिंचाई का फायदा मिलता है। बारिश के मौसम में जब बांध के गेट खोले जाते हैं तो यहाँ पानी का सुंदर दृश्य भी दिखाई देता है। यही वजह है कि ये जगह पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनती है। पारिछा बांध से थर्मल पावर प्रोजेक्ट को भी पानी मिलता है। परिक्रमा के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी।
1: And before we move to some other news, there's a very important news coming in. The Territorial Army has launched a national level hackathon, Terrier Cyber Quest 2026, which is aimed at developing innovative solutions at emerging challenges in defense, cybersecurity, and the information domain. The hackathon has been launched in collaboration with Cyber Peace to bring together technical talent from academia, industry, research institutions, government organizations, and the armed forces. The registration for the competition is open till 31st of August. The online shortlisting phase will be conducted from 1st to 10th of September, followed by the grand finale in New Delhi from 6th to 8th of October.
2: और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। तो सबसे पहले बात करते हैं बैडमिंटन की। भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में पहुंच गई है। नई दिल्ली में आज भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले गेम में पिछड़ने के बाद वापसी की और चौथी वरीयता प्राप्त चीन की जियाई फेन और झांग शुशान को हराया। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। ये 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में भारत का पहला पदक होगा।
1: In hockey, the Indian women's team will take on the Netherlands in the first match of the second pool phase of the FIH World Cup at Amstelveen today. The match will start at 9:30 p.m. Indian time. And moving on to some business news, well, benchmark domestic equity indices ended flat with a positive bias today. Sensex closed at 77,541. Nifty added 20 points to settle at 24,252.
2: और अब हम याद करेंगे उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
3: आज की कड़ी में हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी सहोदरन और पी जीवनंथम के बारे में और बताएंगे अंग्रेजों के अगस्त प्रस्ताव के बारे में भी।
4: आज सहोदरन अयप्पन की जयंती है। केरल के समाज सुधारक और चिंतक अयप्पन का जन्म 21 अगस्त 1889 को एर्नाकुलम के चेन्नई में हुआ था। वे श्री नारायण गुरु की विचारधारा से प्रभावित थे, इसलिए अयप्पन उनके शिष्य बन गए। निष्ठावान राष्ट्रवादी अयप्पन ने 1928 में युक्तिवाद नामक पत्रिका निकाली ताकि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना का प्रचार प्रसार किया जा सके। अयप्पन ने केरल में मिश्र भोजनम का आयोजन शुरू किया।
3: मिश्र भोजनम को केरल के पुनर्जागरण आंदोलन में मील का पत्थर माना जाता है। इसमें सभी जातियों के लोगों ने एक साथ भोजन किया। समाज में भाईचारे को प्रोत्साहन देने के लिए अयप्पन ने सहोदरन पत्रिका शुरू की। इसका प्रभाव ही था कि अयप्पन के नाम के साथ सहोदरन भी जुड़ गया।
4: 6 मार्च 1968 को अयप्पन ने दुनिया से विदा ली, लेकिन केरल के सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण इतिहास में सहोदरन का योगदान सदैव स्मरण किया जाता रहेगा।
3: आज देश के एक और महान सपूत पी जीवनंथम की जयंती भी है। उनका जन्म तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में 21 अगस्त 1907 को हुआ था। वे न केवल एक महान स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक राजनीतिक नेता थे, बल्कि

0: एक सांस्कृतिक विचारक, श्रेष्ठ वक्ता, पत्रकार और आलोचक भी थे। इन सब के अलावा वे वंचितों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले प्रमुख नेता थे। सार्वजनिक जीवन में उनकी छवि साफ सुथरी रही और उनका जीवन बहुत गरीबी में बीता। जीवनंथम ने अपना राजनीतिक जीवन गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित होकर शुरू किया था।
1: 1924 में उन्होंने वाईकम सत्याग्रह में भाग लिया। उन्होंने सुचिंद्रम मंदिर में अछूत माने जाने वाले लोगों के प्रवेश करने की मांग करने वाले प्रदर्शन में भाग लिया। सरयोव्याल आश्रम में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने गांधी जी को पत्र लिखकर उनके कुछ सिद्धांतों पर असहमति व्यक्त की। गांधी जी जब मद्रास आए तो जीवनंथम का पत्र गांधी जी की जेब में था और वे जीवनंथम से मिलना चाहते थे। सरयोव्याल आश्रम में जब गांधी जी पहुँचे तो 25 वर्षीय जीवनंथम से मिलकर चकित रह गए।
0: जीवनंथम की राष्ट्रभक्ति ने उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन की ओर मोड़ दिया और जाति आधारित पक्षपात के खिलाफ उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन का नेतृत्व किया। जीवनंथम ने तमिलनाडु में श्रम आंदोलन को मजबूत करने के लिए अग्रणी भूमिका निभाई।
1: तमिल कवि सुब्रमण्य भारती के कार्यों का उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। वे तमिल साहित्य के अच्छे ज्ञाता और श्रेष्ठ वक्ता थे। जीवनंथम ने भगत सिंह के निबंधों का तमिल भाषा में अनुवाद किया। देश आजाद होने के बाद पहले आम चुनाव में जीवनंथम विधायक बने और तमिलनाडु के विकास के लिए काम किया।
0: आज ही के दिन 1940 में राष्ट्रवादी नेताओं ने वर्धा सम्मेलन में अगस्त प्रस्ताव को ठुकराया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वायसराय लिन लिथगो ने घोषणा की कि जर्मनी से युद्ध में भारत भी ब्रिटेन के साथ है। भारतीय नेता इस घोषणा से नाराज हो गए क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों की सहमति के बिना ही उन्हें युद्ध की आग में धकेल दिया था। लेकिन ब्रिटिश सरकार भारत का समर्थन लेने के लिए लालायित थी क्योंकि उसे युद्ध में पराजय का भय था।
1: वायसराय लिन लिथगो ने भारतीय सेनाओं के समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया गया। इसमें अन्य प्रस्तावों के अलावा भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही गई, लेकिन राष्ट्रवादी नेताओं ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया और संपूर्ण आजादी के अलावा कुछ भी स्वीकार न करने की बात पर अडिग रहे।
0: अगस्त प्रस्ताव असफल होने के बाद महात्मा गांधी ने स्वयं सेवकों से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का आह्वान किया। वर्धा के संत विनोबा भावे पहले स्वयं सेवक बने। सत्याग्रही स्वयं सेवकों ने इसके साथ ही दिल्ली चलो आंदोलन भी शुरू किया।
1: ये स्वाधीनता संघर्ष में निर्णायक मोड़ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद ये स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का अंतिम चरण था। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जिसका नारा था करो या मरो। गांधी जी के करो या मरो के उद्घोष ने स्वतंत्रता आंदोलन में अंतिम आहुति दी।
2: Legendary actress Saukar Janki also passed away in Chennai today, Mukesh. The 94-year-old actor Janki, widely known as Saukar Janki, she breathed her last due to age-related illnesses at a private hospital today. Saukar Janki is well known in South Indian films with an outstanding number of nearly 400 films. A recipient of Padma Shri, she also bagged the Filmfare Lifetime Achievement Award, 2 Nandi Awards, Anna Kalaimamani Award, and started her career in the films in 1950.
3: और अब हम याद कर रहे हैं महान वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, खगोल भौतिक शास्त्री चंद्रशेखर 1983 में भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए थे। उनकी शिक्षा चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई थी और वो नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन के भतीजे थे।
2: And now, of course, Mukesh, we are remembering a very, very renowned personality who probably didn't just play the shehnai, balki wo kehte hain na, kuch log jo hai ek yantra bajate hain aur kuch usme roop hook dete hain.
3: Bilkul.
2: To aaj hum log yaad kar rahe hain Ustad Bismillah Khan ko, who probably breathed a new life into the shehnai.

भारत रत्न से सम्मानित प्रख्यात शहनाई वादक को सन 1969 में एशियाई संगीत सम्मेलन के रोस्टम पुरस्कार तथा अनेक अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और उनकी जो विशिष्ट पहचान थी, उनका योगदान जो रहा है पूरे विश्व भर में, अपनी शहनाई को उन्होंने एक नई पहचान दी। और बिस्मिल्ला खान की जो शहनाई है वो आज़ादी का संदेश भी बांट रही थी। और कब बांट रही थी?

0: 1947 में, तब से लगभग हर वर्ष 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के भाषण के बाद बिस्मिल्ला खान की शहनाई वादन एक प्रथा बन गई है।
1: That's right, Mukesh. And in his hands, the shehnai was no longer merely an instrument of celebration. It became a language of longing, prayer, love, and remembrance. His music seemed to rise from the narrow lanes of Banaras, carrying with it the fragrance of the Ganga, the bells of temples, the azan from distant minarets, and the timeless soul of India. Or, shayad aaj bhi Banaras ke kisi khamosh ghat par Ganga ki rawani mein unki shehnai ki koi door jaati hui taan sunai deti hai. Ek aisi जो वक्त के पार चली जाती है और हमें याद दिलाती है कि कुछ आवाजें कभी खामोश नहीं होती, वो रिवायत बनती हैं, यादें बनती हैं और मौसिकी बनती हैं।
0: बिल्कुल, और हम याद कर रहे हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा विष्णु दिगंबर पलुस्कर को। उन्होंने भारतीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे भारतीय समाज में संगीत और संगीतकार की उच्च प्रतिष्ठा के पुनरुद्धारक, समर्थ संगीत गुरु, अप्रतिम कंठस्वर और गायन कौशल के धनी, भक्त हृदय गायक थे।

0: தொடர்வது செய்திகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே விஷால் சர்மா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की. उन्होंने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक इस्तेमाल करने को कहा. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है. बैठक के दौरान स्टार्टअप के संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे. सरकार ने दोहराया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है. विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि इन जहाजों पर सवार सभी 22 नाविक सुरक्षित हैं और सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है. विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फलस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फलस्तीन के विकास साझेदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की. प्रवक्ता ने कहा कि सचिव ने फलस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फलस्तीन सरकार को सौंपी. गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल SSB के मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कुछ अन्य परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी. श्री शाह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से सीमा सुरक्षा को लेकर पूरा सहयोग दिया जा रहा है.
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया. कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है. मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है. उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता.
1: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी. नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई है. योजना की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्ष की होगी. इस योजना का उद्देश्य मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है. सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है. इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं. इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, AI, सूचना और संचार, विनिर्माण, औषधि डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं. भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा. ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी. इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे. विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा को उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है. साथ ही ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों. डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर का है. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने आज देश में

0: H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर करीबी नजर रखने के भी निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। श्री नड्डा ने कहा कि ये विरोध न तो छात्रों के हित में है और न ही न्याय के लिए। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी சென்னை, நேரம் 6:05. 100.1 MHz FM கோல்ட் அலைவரிசை நிகழ்ச்சி நிரல் கேட்கலாம். ஆறு 10:00 விஸ்லேஷன், 6:30 மார்க்கெட் மந்த்ரா, 7:10 இளைய பாரதம், கே கலந்திகா அவர்களின் மிருதங்க இசை, பி கிரகலட்சுமி அவர்களின் பாட்டு, 7:45 திரைப்பட பாடல், 7:50 செய்தி கதம்பம், 8:10 திரைகானம், 9:15 ஸ்பாட்லைட், 9:30 கரண்ட் அஃபேர்ஸ், 10:10 விஸ்வதர்ப்பன், 10:20 வேர்ல்டு நியூஸ், 10:30 வெஸ்டர்ன் மியூசிக், 11:10 மார்க்கெட் மின்த்ரா, 11:40 திரைகானம்.

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। श्रोताओं, भारत की बड़ी आदिवासी आबादी देश के वन क्षेत्रों और उनके आसपास रहती है। इन समुदायों का जीवन जंगल और उसके संसाधनों से गहराई से जुड़ा हुआ है। जंगलों में मिलने वाली महुआ, शहद, इमली, तेंदुपत्ता, लाख, बांस और औषधि जड़ी बूटियां केवल वन उपज नहीं है, ये उन लाखों जनजाति परिवारों के लिए आजीविका का महत्वपूर्ण आधार भी है। कई जनजाति परिवारों की सालाना आय का 20-40% हिस्सा लघु वनोपज यानी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से आता है। लेकिन इन जनजाति परिवारों के सामने एक बड़ी चुनौती है, कई बार कच्ची उपज को बिचौलियों के जरिए कम कीमत पर बेचना पड़ता है और इससे उत्पाद जुटाने वाले समुदाय को उनकी मेहनत के अनुपात में आय नहीं मिल पाती। इसी चुनौती को बदलने की कोशिश है प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन। वर्ष 2021-22 में शुरू किया गया ये मिशन जनजातीय समुदायों को केवल वन उपज का संग्रहकर्ता बनाए रखने के बजाय उन्हें उसके मूल्यवर्धन, प्रसंस्करण, विपणन और उद्यमिता से जुड़ने पर बल देता है। मिशन के अंतर्गत जनजातीय समुदायों को वन धन विकास केंद्रों के माध्यम से संगठित किया जाता है, जहां स्थानीय उपज को बेहतर उत्पाद में बदलने और बाजार तक पहुंचाने की व्यवस्था विकसित की जाती है। साथ ही सरकार लघु वनोपज के लिए पहले से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के जरिए भी आय को सुरक्षा देने का प्रयास करती है। आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे कि प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन की शुरुआत किस तरह हुई, ये जमीन पर कैसे काम करती है और इस मिशन के अंतर्गत जनजातीय समुदायों को कौशल, तकनीक और बाजार के स्तर पर किस तरह का सहयोग दिया जा रहा है। श्रोताओं, जनजातीय समुदायों के लिए जंगल और उससे मिलने वाली उपज का संबंध केवल आर्थिक नहीं बल्कि उसकी पारंपरिक आजीविका से भी जुड़ा है। ऐसे में सवाल ये है कि लघु वनोपज से जुड़ी इस अर्थव्यवस्था को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित कैसे बनाया जाए। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण आधार बना वर्ष 1996 का पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम। इसके तहत जनजातीय क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों को लघु वनोपज पर स्वामित्व का अधिकार दिया गया। इसके बाद वर्ष 2006 में वन अधिकार अधिनियम लागू हुआ। इस कानून ने वन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के लिए आजीविका से जुड़े अधिकारों को मान्यता दी। इसके अंतर्गत उन्हें गैर इमारती लघु वनोपज के संग्रहण और बिक्री का अधिकार दिया गया। लेकिन अधिकार मिलने के साथ एक और चुनौती सामने थी, उचित कीमत। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि बीते वर्षों में किए गए प्रयासों ने इन वन अधिकारों को आजीविका के अवसरों से जोड़ने और आदिवासी समुदायों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: यदि बाजार में किसी उत्पाद की कीमत गिर जाए और संग्रहकर्ता को अपनी उपज कम कीमत पर बेचनी पड़े तो उसकी आजीविका सीधे प्रभावित होती है। इसी चुनौती को देखते हुए लघु वनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की व्यवस्था विकसित की गई। प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन के तहत 87 लघु वनोपजों के लिए MSP अधिसूचित किया गया है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि बाजार मूल्य कम होने की स्थिति में भी जनजातीय संग्रहकर्ताओं को एक निर्धारित मूल्य के स्तर पर सुरक्षा मिल सके। लघु वनोपज में बांस, शहद, लाख, तेंदु या केंदु पत्ते, औषधीय पौधे और जड़ी बूटियां, जड़े, कंद और इसी तरह के कई गैर इमारती वन उत्पाद शामिल हैं। इस व्यवस्था में ट्राइबल

0: ऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी ट्राइफेड की भूमिका महत्वपूर्ण है। ट्राइफेड जनजातीय उत्पादों के विपणन और विकास के लिए काम करने वाली राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था है। ट्राइफेड राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों के नेटवर्क के माध्यम से निर्धारित MSP पर लघु वनोपज की खरीद करता है। इन एजेंसियों में जनजातीय विकास सहकारी संस्थाएं और वन विकास निगम जैसी संस्थाएं शामिल हो सकती हैं। वर्ष 2013-14 से अब तक राज्य सरकारों ने इस व्यवस्था के तहत 2,67,954 मीट्रिक टन लघु वनोपज की खरीद की है, जिसकी कीमत 693,98,00,000 रुपए रही है। इस अभियान की सोच केवल उपज खरीदने तक सीमित नहीं है। जनवरी 2020 में नीति आयोग ने जनजातीय आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्षेत्र विशेष कार्यक्रम को मिशन मोड में तैयार करने की सलाह दी। इसके बाद अक्टूबर 2020 में कौशल विकास और रोजगार सृजन से जुड़े मंत्रियों के समूह ने प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन मेरा वन मेरा धन मेरा उद्यम नाम से एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करने की सिफारिश की। इसी पृष्ठभूमि में पहले से चल रही दो व्यवस्थाओं को मिलाकर जनजातीय विकास मिशन की अवधारणा तैयार की गई। एक और था लघु वनोपज के लिए MSP और वैल्यू चेन डेवलपमेंट का तंत्र, जिसमें वन धन योजना शामिल थी। दूसरी तरफ जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिए इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की व्यवस्था, इन दोनों को एक व्यापक मिशन के रूप में भी जोड़ा गया। वन धन योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2018 को हुई थी। इसके तहत जनजातीय संग्रहकर्ताओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया जाता है। लगभग 15 वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मिलाकर एक वन धन विकास केंद्र बनाया जाता है, जिसमें करीब 300 सदस्य हो सकते हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य केवल उपज इकट्ठा करना नहीं है, यहाँ लघु वनोपज और अन्य जनजातीय उत्पादों के मूल्यवर्धन और विपणन के लिए सामूहिक व्यवस्था विकसित की जाती है। इस तरह जनजातीय विकास मिशन का मॉडल केवल ये नहीं कहता कि जंगल से उपज लेकर बाजार में बेचिए, बल्कि प्रयास ये है कि जंगल से उपज आए, समुदाय उसे संगठित करे, उसका मूल्यवर्धन हो, उत्पाद तैयार हो और फिर वो बाजार पहुँचे।
1: श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से कच्ची वन उपज से आगे बढ़कर सामुदायिक उद्यम तैयार करने की दिशा में काम किया जा रहा है। आज तक 4,172 वन धन विकास केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 2,911 कार्यरत हैं और इनसे 12,48,000 जनजातीय सदस्य जुड़ चुके हैं। लेकिन किसी भी उद्यम की सफलता केवल उसके ढांचे से तय नहीं होती, इसके लिए कौशल, तकनीक, वित्त, बुनियादी सुविधाएं और बाजार, इन सभी की आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन के अंतर्गत जनजाति समुदायों को ये सुविधाएं किस तरह उपलब्ध कराई जाती हैं और एक वन धन विकास केंद्र जंगल की उपज को बाजार तक पहुंचाने में क्या भूमिका निभाता है, आइए अब इसे विस्तार से समझते हैं।
0: प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन के तहत जनजातीय समुदायों को कौशल, तकनीक, वित्त, बुनियादी ढांचे और बाजार से जोड़ने के लिए सहायता का एक पूरा तंत्र विकसित किया गया है। इसकी शुरुआत होती है कौशल विकास से। वन धन विकास केंद्रों में लघु वनोपज संग्रहकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें वैज्ञानिक तरीके से उपज एकत्र करने, उसके प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन जैसी गतिविधियां शामिल हैं। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूहों को उनकी स्थानीय जरूरत के अनुसार प्राथमिक प्रसंस्करण के उपकरण भी उपलब्ध कराए जाते हैं। इनमें कटिंग और सीविंग उपकरण, डिकॉर्टिकेटर, ड्रायर और पैकेजिंग से जुड़े उपकरण शामिल हैं। यानी जिस उपज को पहले कच्चे रूप में बेचा जाता था, उसे स्थानीय स्तर पर आगे की प्रक्रिया से गुजारकर अधिक उपयोगी और बाजार योग्य उत्पाद में बदलने की क्षमता विकसित की जाती है। इस काम के लिए बुनियादी ढांचे की भी जरूरत होती है। वन धन विकास केंद्रों को लाभार्थी के घर, सरकारी भवन या ग्राम पंचायत भवन में स्थापित किया जा सकता है। इसके साथ ही भंडारण और परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। वित्तीय जरूरतों के लिए स्वयं सहायता समूह को बैंकों, वित्तीय संस्थानों और नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSTFDC के साथ जुड़कर कार्यशील पूंजी की सुविधा दिलाने का प्रयास किया जाता है। मिशन में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वन धन विकास केंद्रों के सदस्यों को आगे चलकर वन धन प्रोड्यूसर एंटरप्राइजेस बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन उत्पादन और प्रसंस्करण के बाद अगली चुनौती है बाजार तक पहुंच। इसके लिए वन धन विकास केंद्रों को स्थानीय हाट बाजारों से जोड़ा जाता है। जनजातीय क्षेत्रों में ऐसे 5,000 से अधिक हाट हैं। इन्हें चरणबद्ध तरीके से स्थायी ढांचे, भंडारण, पेयजल, छाया और वजन की सुविधाओं के साथ आधुनिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा जनजातीय उत्पादों को स्थानीय बाजार से आगे ले जाने के लिए मेले और प्रदर्शनी आयोजित किए जाते हैं। उत्पादों की ब्रांडिंग और प्रचार तथा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को विकसित करने पर भी जोर दिया जाता है। ट्राइफेड की ओर से वन धन विकास केंद्रों को बाजार से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें दैनिक दरों और ई कॉमर्स के अवसरों से संबंधित जानकारी शामिल होती है। इससे उत्पादक समूहों को अपने कारोबार से जुड़े निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्रोताओं, जब

स्थानीय संसाधन स्थानीय समुदाय के हाथों में रहकर उत्पाद और उद्यम का रूप लेते हैं तो वन आधारित आजीविका केवल आय का साधन नहीं रहती बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण का आधार बन जाती है। यही सोच एक ऐसी जनजाति अर्थव्यवस्था की दिशा दिखाती है जिसमें परंपरा और आधुनिक बाजार स्थानीय संसाधन और नई तकनीक तथा सामुदायिक स्वामित्व और उद्यमिता एक साथ आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक राजेश कुमार।

0: பாஜப சர்வகாரஹ கேந்திரே சத்தாம் பிராப்னோத் சீமா சுரக்ஷார்த்தம் உத்தரதாயினாம் கர்மச்சாரிணாம் கல்யாணாய சர்வோச்ச பிராத்மிக்தா ததா தத்தாஸ்திதி. சஹ அதோரேகிதவான் யத் SSB இதி பலம் நேபாள பூட்டான இத்தியாதிபி தேசை சஹ முக்த சீமாயாக ரக்ஷணஸ்ய சமாஹன பூர்ணம் காரியம் நிர்வஹதீதி. ஏதத் கடினதமேசு கர்த்தவியேசு அன்யதமம் இதி சஹ உக்தவான். அப்பி ச சஹ உல்லிகத் யத் சிலிகுடி மார்க்கஸ்ய மகத்துவம் அவகந்தும் கேந்திர சர்வகாரேண அஸ்மின் பிரதேசே நிரீக்ஷணம் பிரவர்தித்தம் அஸ்திதி.
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया. कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है. मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है. उनको मालूम है, जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है. और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा बना, सीमा पर बाड़ को पूरा लगा दिया जाए.
0: प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते. सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति. अद्य दूरसंचार सूचना संचार तंत्रज्ञान क्षेत्रादिषु सहकारं प्रगाढीकर्तुं भारत ब्राजील देशौ सहमति पत्रेषु हस्ताक्षराणि अकुरुताम्. सामाजिक प्रसार माध्यमे दूरसंचार विभागः अवदत् यत् एषा संधिः डिजिटल नवान्वेषणस्य प्रगत्या सह डिजिटल आधारिक संरचनायाः सुदृढीकरणञ्च करिष्यतीति. उदयोन्मुख प्रौद्योगिकीनां सहकारञ्च वर्धयिष्यत्यपि. पुणे नगरे आयोजितस्य द्वादश ब्रिक्स संप्रेषण मंत्रिणां सभां निकषा केन्द्रीय संप्रेषण मंत्रिणा ज्योतिरादित्य माधव सिंधिया इत्यनेन ब्राजील देशस्य संप्रेषण मंत्रिणा फेडरिको डी सिक्विरा फिल्हो वर्येण च संधिपत्रेषु हस्ताक्षराणि कृतानि. आयोजनस्यास्य अध्यक्षः केन्द्रीय संप्रेषण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया स्वस्य प्रारंभिक भाषणे भारतस्य भविष्यस्य विषये दृढं दृष्टिं निरूपयन् उक्तवान् यत् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्यस्य डिजिटल इंडिया इत्यभियानं प्रति प्रतिबद्धतया मार्गदर्शितं स्थितिस्थापकं विश्वसनीयं नवान्वेषिणं सशक्तिभूतं सर्वसमावेशयुतञ्च भवतीति भारतस्य दृष्टिकोणं अधोरेखितवान्.
2: Over the past decade, BRICS has emerged.
3: पिछले एक दशक में ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है, जो लगभग आधी मानवता और प्रतिभा तथा नवाचार के अपार भंडार का प्रतिनिधित्व करता है. अब हमारा ध्यान संस्थाओं के निर्माण से आगे बढ़कर सहयोगात्मक पहलों को लागू करने की ओर विकसित होना चाहिए.
2: इम्प्लीमेंटिंग कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स.
0: ईरान देशस्य विदेशमंत्री श्री अब्बास अरागची इत्येषः स्वदेशं विरुध्य दत्तान् आर्थिक प्रतिबंधान् निराकुर्वन् उक्तवान् यत् एतादृश्यः विफल नीतयः ईरान जनेषु अधिकां शत्रुतां जनयिष्यन्तीति, अधिकां विफलताम् अपि आनयिष्यन्तीति च. अरागची इत्यस्य इमां टिप्पणीं ट्रम्पेन ईरान विरुद्धं कठोर आर्थिक पदक्षेपोत्थापन रूपेण स्वीकृतम्. सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य स्वस्य 25-2000 मे मासिक निर्णये परिवर्तनं कृत्वा प्रवेशस्तरीय न्यायिक सेवा परीक्षासु भागं ग्रहीतुं विधिस्नातकानां कृते पूर्वतनस्य अनिवार्य त्रिवर्षीय विधि अभ्यासस्य आवश्यकतां एकवर्षं यावत् न्यूनीकृतमस्ति. झारखंड उच्च न्यायालयेन JSSCCGL अथ CDPO परीक्षाभ्यः नियुक्ति निरसनस्य राज्य सर्वकारस्य आदेशस्य विषये अंतरिम स्थगनम् अस्थापितमस्ति. याचिकाः न्यायालयस्य पुरतः तर्कं कृतवन्तः यत् विज्ञापनानि नियुक्तयश्च आकस्मिकरूपेण निरसनात्मक सर्वकारस्य निर्णयः विहित नियमानाम् अनुरूपः नासीदिति. औषध विभाग सचिव मनोज जोशी अद्य चिकित्सा उपकरण उद्यमम आग्रहत यत् भारतस्य विनियामक संरचनायाः निर्माणे बृहत्तरं निवेशं प्रदातव्यमिति. नवदेहल्यां CII ग्लोबल मेडटेक इत्याख्यं शिखर सम्मेलनं संबोधयन् श्री जोशीवर्यः अवदत् यत् विनियामक चर्चासु उद्योगस्य सहभागिता सम्प्रति परिमिता अस्तीति.

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में आज की कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ एके भट्टाचार्य। एके भी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।
1: और सबसे पहले मुख्य समाचार।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड ऑन अ फ्लैट नोट, सेंसेक्स सेटल्स एट 77,541, Nifty adds 20 points. India's foreign exchange reserves rise by $9.9 billion in the week ending August 14, and global crude oil prices rise.
1: घरेलू शेयर बाजार सूचकांक आज लगभग सपाट बंद हुए। सेंसेक्स 77,541 पर पहुंचा, जबकि निफ्टी में 20 अंक की तेजी आई। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 14 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह में 9.90 अरब अमेरिकी डॉलर बढ़ा और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल।

0: And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और बढ़ते हैं अब खबरों की तरफ. देश के प्रमुख घरेलू शेयर बाजार सूचकांक आज लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में मामूली बढ़त दर्ज करते हुए लगभग सपाट बंद हुए. सेंसेक्स 3 अंक की बढ़त के साथ 77,541 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 20 अंक की तेजी दर्ज करता हुआ 24,252 पर पहुंच गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक में 0.10% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.07% का उछाल देखा गया. बाजार आज सुबह सकारात्मक रुख के साथ खुले, लेकिन पूरे दिन सीमित दायरे में कारोबार हुआ. भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और वैश्विक बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी तथा कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण बाजार पर दबाव भी बना रहा.
0: Benchmark domestic equity indices ended flat with a positive bias today. Sensex added 3 points to close at 77,541. Nifty rose by 20 points to settle at 24,252. In the broader market at the NSE, the mid-cap 100 index gained 0.10%, while the small-cap 100 index increased by 0.7%. And despite opening on a positive note in the morning, markets witnessed range-bound trading throughout the day due to geopolitical uncertainties, elevated global bond yields and high crude oil prices.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 16 कंपनियों के शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए. प्रमुख कमजोर शेयरों में ट्रेंट और मारुति में 1.51% से अधिक की गिरावट आई, जबकि इंडिगो 1.35% और HCL टेक्नोलॉजी में 1.2% की गिरावट देखी गई. वहीं तेजी वाले शेयरों में पावर ग्रिड 2.66%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1.17% और कोटक महिंद्रा बैंक 1.08% में लाभ देखा गया.
0: इन द सेक्टोरल इंडिसेस ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 17

0: out of the 28 sectors registered gains. The top gainers were insurance that rose by 0.94%. Utilities as well as mid-small private banks, a quality tilt around 0.7%. Mid-small private banks added 0.65%. Among the laggards, FMCG and auto shed 0.68%. Housing finance fell by 0.61%, while hospitals lost 0.5%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive as shares of 2,240 companies advanced, 2,093 companies declined, and shares of 231 companies remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में लगभग सपाट रहते हुए 95.71 रुपए पर बंद हुआ। एकेबी कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: मार्केट में आज लगातार दूसरे दिन एक सकारात्मक रुख देखा गया, इससे क्या ये मानकर चलना चाहिए कि सीमित दायरे में कारोबार किया जा रहा है या फिर बाजार में कहीं कोई तेजी आने की संभावना नजर आ रही है?
2: देखिए, सीमित दायरे में काम किया जा रहा है, जो धंधा लोग कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट निवेश कर रहे हैं, सीमित दौर से काम कर रहे हैं। जो दो तीन जो ट्रेंड जो हैं वो अभी भी मार्केट के मूवमेंट को इन्फ्लुएंस कर रही है। पहली बात तो यह है कि जो विश्व की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें की जो अनिश्चयता, दूसरी कारण ये है कि जो बाजार में विश्व के बाजार में जो जो बॉन्ड मार्केट में जो थोड़ा खलबली तो नहीं कहूँगा मैं, पर उसके यील्ड में जो उसका मतलब जो इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, कॉस्ट ऑफ मनी में जो जो चढ़ाव हो रहा है, जो जो दाम बढ़ रहे हैं वो है। और तीसरा जो है आपका जो क्रूड ऑयल का जो दाम जो है उसका आउटलुक, अभी तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहे हैं, पर द लेटेस्ट जो जो ट्रंप साहब का जो ऐलान है कि वो एक इकोनॉमिक वॉर ईरान के ऊपर छेड़ेंगे, उससे क्रूड ऑयल मार्केट में एक उसका एक प्रभाव दिख रहा है। और ये तीनों चीज जो वैश्विक अनिश्चयता और जो बॉन्ड यील्ड में चढ़ाव और तीसरा आपका जो क्रूड ऑयल के दाम और यूएस की इकोनॉमिक सैंक्शंस को इकोनॉमिक वॉर वो करेंगे, एक न्यू डीडीए फॉर द इकोनॉमिक वॉर वो करेंगे, उससे काफ़ी मार्केट में और उसी का एक थोड़ा बहुत प्रतिफलन हमें डोमेस्टिक मार्केट में दिख रहा है। और जो कल जो मार्केट में जो हमने जो करीबन 0.8 और 0.9% वृद्धि देखी है हमने सेंसेक्स में कल, उसका कारण ये था कि उनके पिछले 7 दिनों में काफ़ी नीचे था, वो जरा रिकवरी होकर स्टेबिलाइज किया है। पर अगर आप पूरी तरह से अगर 6 महीने की देखें, अगर वॉर से देखें, तो मैं समझता हूँ कि भारत की जो स्टॉक मार्केट में है वो उसी जगह अटकी हुई है जहाँ वो उस समय थी।
0: AKB, do you think that Trump's announcement of this initiative of isolating Iran, the economic D-Day as he calls it, is triggering how the global markets are behaving, including the Sensex and Nifty right now? Because fundamentally, the first quarterly results for the new financial year has been quite positive on the net profit side, on the revenue side. Even margins for companies have improved. Do you think, even from the point of view of the PMI index for services and manufacturing are well above 50, even if it's below month on month, do you think that it's because of this trigger of Trump that is creating that kind of sentiment in the market where FIIs and FPIs have been net sellers, but DIIs are not quite buying into the market as they were earlier?
2: There are two things that we must bear in mind in this context. Number one is that the disconnect between the macro economy, even the sectoral economy in India, and how the stock market is behaving, that disconnect is now complete. Today, if you are looking at the macro economy, looking at the sectoral economy, you see a story of relative calm, growth. As you also pointed out, the corporate sector sales as well as profit has been very good in Q1. The economy is expected to rise not less than 7% for the full year. This is in spite of the early war. So economy is doing well, but the markets remain where they are. So the disconnect between the actual

0: earlier, but now seems to be weighed in by what's happening in the bond market, the treasuries, notes, where it has gone up substantially. The 10-year US bond is 4.7%, the yield. The 1 month, 3 months, 6 months is between 3.7 and 3.9%. The 1 to 2 year is between 4 and 4.2%. The 30-year US Treasury bond is 5.243%. Do you see this buyback rally continuing and affecting the US equity market?
1: This will definitely impact. This will go on for an economy that that declares a debt level of $43 trillion. Dollars, you don't expect anything else. So with a debt level of that, the bond markets will react the way it has. So I think this will definitely have an impact. But the larger point that we need to keep in mind, that this will have an adverse impact to the other emerging markets as well. Because when the bond yields in the US go up, a lot of money which is lying scattered, invested in various markets like India, they tend to go back looking for greener pastures. So that's what will happen. So it is bad thing for the US. It is also bad thing for the global emerging markets like India.
2: सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि वो स्थिति पर करीबी से नजर रख रहा है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में चीनी की कीमत बढ़ी है। पिछले महीने की 20 तारीख को चीनी की कीमत 48 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जो कल बढ़कर करीब 55 रुपए प्रति किलोग्राम पर हो गई। एक ही भी इस खबर पर आपके क्या विचार होंगे, क्या कहना चाहेंगे आप?
1: देखिए जो हुआ है वो तो जो अक्टूबर से सितंबर का जो शुगर सीजन जो है उसमें जो स्टॉक लेवल जो सितंबर में आएगी वो लेवल जो कंफर्टेबल लेवल जो होता है उससे करीबन 1 मिलियन टन और 1.5 मिलियन टन कम होगा। इसीलिए सरकार का प्लान भी है कि वो रॉ शुगर 0% ड्यूटी में इंपोर्ट करने का भी उन्होंने एक निर्णय लिया है। वो अगर 1 मिलियन टन इंपोर्ट आ जाए उससे ज़रूर हमारी जो डोमेस्टिक शुगर प्राइसेस की जो स्थिति जो है उसमें कुछ कंट्रोल आएगी। पर उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जो शुगर की जो एक डिमांड जो है वो एथेनॉल की सेक्टर को करीबन 2.4 मिलियन टन को एथेनॉल को जाती है, तो वो उससे भी ये प्रेशर बढ़ गया है। और क्योंकि इंपोर्ट का निर्णय लिया गया है, जो शुगर स्टॉक्स जो हैं, अगर आप देखें स्टॉक मार्केट में आज की तारीख में शुगर स्टॉक्स में भी काफ़ी एक एडवर्स इम्पेक्ट आया है, क्योंकि जो शुगर कंपनियाँ जो हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी बहुत कमी आएगी, इंपोर्ट आने से उनके दाम घट जाएंगे। तो ये एक सार्वजनिक दृष्टिकोण है, पर मैं समझता हूँ कि शुगर इकोनॉमी एक बहुत बड़ी एक आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत एक महत्वपूर्ण सेक्टर है।
2: जी।
0: In more news, the unincorporated establishments in the non-agriculture sector continued their growth momentum in the first quarter of this financial year. Despite global uncertainties, the sector grew by 9.2% year-on-year for the April to June quarter, according to the quarterly bulletin of unincorporated sector enterprises released by the Ministry of Statistics and Program Implementation today. The estimated number of establishments increases 8.67 crore in this period. Employment in the unincorporated non-agricultural sector reached 13.7 crore, with the other services sector emerging as a key driver, recording employment growth of more than 21%. This is followed by the manufacturing sector, which registered growth of 10.06% in the estimated number of establishments and 6.6% in the estimated workforce. However, the unincorporated trade sector recorded a year-on-year decline of 7.88% in the estimated number of establishments and 7.29% in the estimated workforce. So your comments briefly on this, the unincorporated sector enterprises, the quarterly bulletin that's come out.
1: Well, I think the unincorporated sector is a very important sector. They represent the largest segment of the Indian industry. But I think it's important to note

0: the urban sector has done better than the rural sector in jobs, and there is a welcome trend that we see of how women employment in these unincorporated sector has seen a significant rise. So both these developments, to my mind, are significant.
1: In more news, the Income Tax Department has said that over 6.5 crore income tax returns have already been filed for the assessment year 2026-27. It includes more than 2 crore ITRs 3 and 4 till yesterday. The department has urged taxpayers to avoid the last-minute rush, as the last day to file ITR 3, 4, 5 and 7 is before the 31st of this month.
2: सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें से एक प्रमुख योजना प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा है, जिसकी शुरुआत सितंबर 2018 में की गई थी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले कई वर्षों में इस योजना के तहत बजट आवंटन में काफी बढ़ोतरी हुई है। इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए दामों में स्थिरता बनाए रखने के साथ साथ किसानों को उनके परिश्रम का उचित मूल्य दिलाना है। योजना के अंतर्गत 2024-25 में वास्तविक खर्च लगभग 5,400 करोड़ रुपए था, जो 2026-27 में बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया।
1: In more news, from the crude oil market, global crude oil prices rose today. Brent crude was trading 0.67% up at $94.41 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.48% higher at $87.25 per barrel when reports last came in. How concerned are you, AKB? Because even the Urals oil, which comes from Russia, is trading at $89 per barrel because of what's happening between Russia and Ukraine in that war. And now you have the threat of economic D-Day on Iran by the US president. How concerned are we about global inflation here?
0: It is a cause for concern. If the situation persists, it will definitely mean a bigger burden on India's crude oil import costs. So therefore, and domestic oil companies, which have reasonably weathered the first few months of impact of the West Asian war reasonably well, I would say, along with the government support of reducing the taxes and all that, if this remains at this level for some more time, it will be a cause for concern, prompting the government and the oil companies to take some more steps by which the bottom lines and protection is taken.
2: और आगे बढ़ते हैं। भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट वाला सोना आज 2.25% के उछाल के साथ 1,60,620 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। इस बीच चांदी 3.72% ऊपर चढ़कर 2,46,630 रुपये प्रति किलोग्राम थी। एकेबी, हमने अभी देखा कि पिछले 2-3 दिनों में सोना और चांदी दोनों में उछाल देखने को मिल रहा है। इसके पहले एक दायरे के बाद से थोड़ी सी गिरावट भी देखी जा रही थी। इस पर आपके क्या विचार हैं?
0: देखिए, फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है। अगले हफ्ते राखी है। राखी के सामने उसके बाद फेस्टिवल सीजन का आना होता है। मैं समझता हूँ कि अब गोल्ड की डिमांड भी बढ़ेगी और उसके दामों में भी थोड़ी बहुत वृद्धि होगी और उसी का एक आभास इशारा कर रहा है कि गोल्ड के दामों में और भी वृद्धि आने वाली है।
2: एकेबी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices end on a flat note. Sensex settled at 77,541. Nifty adds 20 points. India's foreign exchange reserves rise by $9.9 billion in the week ending August 14. And global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
2: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप के संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि इन जहाजों पर सवार सभी 22 नाविक सुरक्षित हैं और सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क में है। विदेश मंत्रालय की सचिव श्री प्रिया रंगनाथन की फलस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फलस्तीन के विकास साझेदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने कहा कि सुश्री रंगनाथन ने फलस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फलस्तीन सरकार को सौंपी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल SSB के मुख्यालय में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री शाह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य सरकार सीमा सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार के साथ पूरा सहयोग कर रही है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को स्वीकृति दी थी। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई है। योजना की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्ष की होगी। इस योजना का उद्देश्य मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने और घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाना है। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, AI, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग $12 अरब का है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। श्री नड्डा ने कहा कि विरोध ना तो विद्यार्थियों के हित में है और ना ही न्याय के हित में। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। यह 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में भारत का पहला पदक होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष

0: क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप के संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 3 नए आपराधिक कानूनों पर आधारित न्याय संहिता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। श्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि घुसपैठियों को पकड़कर देश से बाहर भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने राज्य में नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में सहयोग नहीं किया। श्री शाह ने कहा कि अब भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार में राज्य में कानून का शासन स्थापित हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई है। योजना की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्ष की होगी। इस योजना का उद्देश्य मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना और घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाना है। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। विदेशी ध्वज वाले 2 जहाजों से संबंधित घटना के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि इन जहाजों पर सवार सभी 22 नाविक सुरक्षित हैं और सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क में है।
1: 2 जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
2: वी आर इन टच विद द अथॉरिटीज दैट आर कंसर्न्ड इन दिस।
0: सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्ताव के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, AI, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का एक अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग $12 अरब का है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की। श्री नड्डा ने कहा कि ये विरोध न तो छात्रों के हित में है और न ही न्याय के लिए। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टलफन में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi today interacted with chief executive officers and founders of 20 space startups in New Delhi. The Prime Minister called for wider applications of space technology to improve the lives of people. Mr. Modi said that the country's space sector can become a magnet for global talent, companies and investment, and suggested creating an ecosystem and an environment where when the world thinks of space, it looks towards

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: இதுவரை திரை இசை கேட்டீர்கள். இனி தொடர்வது டெல்லியஞ்சு.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சே சமாச்சார் சந்தியா கே சாத் மே விஷால் சர்மா. मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड्स से।

0: और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय फोरम को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था है, 10,000 से ज्यादा लेवल क्रॉसिंग गेट्स को भी इंटरलॉकिंग से जोड़ा जा चुका है। इससे ह्यूमन एरर से होने वाले हादसों की आशंका बहुत कम हुई है। साथियों, जब 2014 में हमारी सरकार आई तो करीब 9,000 फाटक ऐसे थे जो अनमैंड थे। इन्हें हटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अनमैंड क्रॉसिंग की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन पहले की सरकारों को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता था। हमने मिशन मोड में गत 10 वर्ष में इन अनमैंड क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया।
0: प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधान नगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है, जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
0: श्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है।
3: मैं बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, जैन शरणार्थियों को वादा कर जाता हूँ कि 6 माह में आप सभी को हम नागरिकता दे देंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने सारे अधिकार बंगाल सरकार के 8 कलेक्टरों को दे दिए हैं। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर पश्चिम बंगाल से निकालने का मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को वादा करना चाहता हूँ।
0: गृह मंत्री ने कहा कि अवैध प्रवासन कतई बर्दाश्त न करने की नीति जारी रहेगी और अवैध प्रवासियों को पहचानने, नाम हटाने और निर्वासित करने की प्रक्रिया सख्ती से लागू की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि हर अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकी बदलाव को भी सख्ती से रोका जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी संख्या में उपस्थित कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा कानून के विद्यार्थियों तथा अन्य नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि 3 नए कानूनों से देश व राज्य की जनता और अधिक सुरक्षित होगी। उन्होंने आगे कहा कि जुलाई 2024 से ही देश में यह कानून लागू हो गया था, परंतु विगत की TMC की ममता सरकार ने इसे पूर्ण रूप से लागू होने नहीं दिया, परंतु भाजपा की सरकार आते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस कानून को पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिलीगुड़ी से अशोक चौरसिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है।

0: हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। रिपोर्ट।
1: सरकार चीनी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मंत्रालय ने पाया कि कुछ चीनी मिलों और व्यापारियों द्वारा जमाखोरी की वजह से भी चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर तक पूरे देश में चीनी व्यापारियों के लिए अधिकतम 400 टन का स्टॉक रखने की सीमा तय की है। इसके अलावा थोक उपभोक्ताओं को 1 सितंबर से 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की इजाजत नहीं होगी। सरकार द्वारा राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है। इससे अक्टूबर में चीनी का उत्पादन सामान्य 3 से 4 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिससे त्योहारों के मौसम में चीनी की उपलब्धता और बेहतर होगी। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वो स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। योजना का उद्देश्य उत्पादन का स्तर बढ़ाकर मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत और व्यापक बनाते हुए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को सशक्त बनाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश की स्थिति मजबूत करना है। इस योजना से भारतीय मोबाइल ब्रांड को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने में भी मदद मिलेगी। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना भारतीय स्वामित्व वाले मोबाइल ब्रांड, बौद्धिक संपदा और डिजाइन के विकास को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी।
2: भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट का इकोसिस्टम बहुत वाइड स्प्रेड हो गया है। MSME और फाइनल प्रोडक्ट्स के बीच में पूरा एक वैल्यू चेन का रिलेशन है। उस तरीके से ये चीज डेवलप हो रही है। PLI केवल एक प्योरली प्रोडक्शन बेस्ड था। इसमें डोमेस्टिक वैल्यू के लिए अलग से, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के लिए अलग से रखा गया है, और साथ ही साथ इंडियन ब्रांड को डेवलप करने के लिए, इंडियन IP को डेवलप करने के लिए, इंडियन डिजाइन को डेवलप करने के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि योजना की अवधि के दौरान देश में मोबाइल फोन का संचयी उत्पादन करीब 39 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। श्री जायसवाल ने विदेशी ध्वज वाले 2 जहाजों से संबंधित घटना के बारे में कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है।
3: 2 जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
0: विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फिलिस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फिलिस्तीन के विकास साझेदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने बताया कि सुश्री रंगनाथन ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फिलिस्तीन सरकार को सौंपी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब डॉलर का है। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से

0: के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इन प्रस्तावों में सूचना प्रौद्योगिकी, एआई, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब कुछ खेल खबरें। एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल भारत ने पूल डी के अपने अंतिम मैच में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में प्रवेश किया था। भारतीय महिला पहलवान काजल ढोचक ने लगातार दूसरी बार अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में काजल ने फाइनल में चीन की जिंगरू सून को 7-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 72 किलोग्राम वर्ग में भारत की तनु शर्मा और 62 किलोग्राम वर्ग में सविता ने रजत पदक अपने नाम किया। 68 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए फाइनल में भारत की मानसी लाथेर का मुकाबला चीन की चेंग लिंग से होगा और 59 किलोग्राम वर्ग के रैपिचेस राउंड में कोमल स्पेन की रोजा मोलिना के साथ खेलेंगी। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर दिया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित भारत के उत्तर पूर्वी भागों में भी इस महीने की 24 तारीख तक तेज बारिश की आशंका है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: सेंसेक्स 3 अंक की बढ़त के साथ 77,541 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 20 अंक की तेजी दर्ज करता हुआ 24,252 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में लगभग सपाट रहते हुए 95.71 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a global bright spot for growth amid concerns over global growth and weaponization of resources. Home Minister Amit Shah reiterates government's commitment to deport every illegal immigrant from the country. Government assures availability of adequate sugar stocks to meet domestic demand. Union Minister Ashwani Vaishnav launches mobile phone manufacturing scheme with outlay of over 62,000 crore rupees to enhance domestic supply chain and global competitiveness. Health and Family Welfare Minister J.P. Nadda reviews situation and preparedness for H1N1 influenza in the country. And in Hockey World Cup, Indian women's team to take on the Netherlands in the second pool phase match. Prime Minister Narendra Modi has said India has been seen as a bright spot of growth throughout the globe, even as the world has many concerns regarding growth and resources are getting weaponized. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi this evening,

0: rocket engines. Previously, you are dependent on these rocket engines because of patents and IPRs, and the foreign owners will not share the technology behind it. But now startups are printing that in a 3D printed rocket engines, and that has been deployed. That has been showcased in Europe and in other countries, which has amazed all the stakeholders globally about the talent, about the capability, and about the innovation which Indian startups can do. And that's why in defense sector also, the more niche you can innovate, the more faster you can innovate in technology, like how advanced you are in defense tech, that gives a bigger edge, whether it's on the land, whether it's in attack, whether it's on space, whether it's on surveillance. So I think overall ecosystem, startups are empowering Bharat by creating economic strength for Indian ecosystems. When India becomes like 10 trillion or 50 trillion, the projections are like majority of contribution will come from innovations, and that will be derived from these 200,000 startups, because they will becomes like global enterprise. Now it's not Startup India is just thinking of creating new startups. They are creating of thinking Bharatiya enterprise. They are thinking of creating Googles and Microsofts of India. They are also thinking of exporting that to our fellow ecosystem, whether it's multilateral or bilateral.
1: Thank you, Mr. Sharma. Thank you, Lieutenant General Kulkarni, for a detailed overview. So thank you so very much.
2: Thank you.
0: Thank you.
3: You were listening to a discussion on Startup India, empowering enterprises and driving innovation. The participants were Lieutenant General Sanjay Kulkarni, defense analyst, and Prasoon Sharma, entrepreneur and public policy expert. Moderator was Manas Pratim Bhuyan, journalist. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
4: Current Affairs. नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। प्रधानमंत्री ने इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों की नीति लोगों को अभाव में रखने की थी, ताकि वो बुनियादी जरूरतों के लिए भी सरकार के सामने हाथ फैलाने को मजबूर रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट में नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्यायिक संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
5: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है, जब तक घुसपैठ नहीं रोकती

0: सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
1: श्री शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वो स्थिति पर करीबी से नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। श्री जायसवाल ने विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: I assured the Hindu, Sikh and Jain refugees who have come from Bangladesh that within 6 months, we will grant citizenship to all of you. The Union Home Ministry has delegated its power to 8 characters of the West Bengal government. At the same time, I want to once again assure the people of Bengal that every infiltrator will be identified and removed from the state.
1: मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को वादा करना चाहता हूं.
2: Mr. Shah said for the safety and security of the state and the nation, the sensitive Siliguri corridor known as the Chicken Neck is paramount. Earlier today, the Home Minister laid the foundation stone for various projects for the Sashastra Seema Bal in Siliguri. West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari was present in the events. Union Minister for Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav today launched the Mobile Phone Manufacturing Scheme MPMS. Union Cabinet had approved the scheme last month with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees. The Minister of Electronics and IT has also notified the scheme. The scheme aims to increase global competitiveness by further enhancing the scale, deepening the mobile manufacturing supply chain and stronger domestic manufacturing capabilities. Addressing Media New Delhi, Mr. Vaishnav said the MPMS has 2 target segments, including incentivizing mobile phone manufacturing and supporting Indian mobile phone brands.
3: Mobile phone production cumulative, which was about 22 lakh crore, will be doubling in this period. It will go up to 40 lakh crore. That's a big thing. And as you know, last year, smartphone as a category, as a product, was the largest exported item out of India. That position will be retained, that position will be further strengthened. Electronics manufacturing became the third largest category. That will also get sustained now with all these initiatives.
2: Health and Family Welfare Minister J.P. Nadda today reviewed the prevailing situation and preparedness for H1N1 influenza in the country, with particular focus on the national capital. The minister informed that Mr. Nadda emphasized the need for continued vigilance, robust surveillance and proactive preparedness with close monitoring of influenza trends. He also emphasized public awareness and preventive health practices, including respiratory hygiene and hand hygiene, and advised individuals with persistent or severe respiratory symptoms, breathing difficulty or other warning signs to seek medical advice promptly. In hockey, the Indian women's team will take on the Netherlands in the opening match of the second pool phase of the FIH World Cup in Amstelveen, the Netherlands today. The match is scheduled to begin at 9:30 p.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.
4: Namaskar. Aakashwani se Vishw Darpan ke saath main Bhavtarini. मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक वृद्धि और संसाधनों के सस्त्रीकरण की चिंताओं के बीच भारत विकास के एक उज्ज्वल केंद्र के रूप में उभर रहा है. भारत और ब्राजील ने डिजिटल नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. बलूच समूह ने बलूचिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की. ईरान ने अमेरिका के किसी भी नए आर्थिक हमले का कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी. और बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद BWF विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स के सेमीफाइनल में. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में विकास और संसाधनों को लेकर कई चिंताओं के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विकास के उज्ज्वल केंद्र के रूप में देखा जा रहा है. नई दिल्ली में आज शाम इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही.
5: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों. रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा. लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है. भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है.
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब पिछली सरकारों के उत्पादन से दंड मॉडल से निकलकर उत्पादन से प्रोत्साहन यानी प्रोटेक्शन लिंक इंसेंटिव मॉडल की ओर बढ़ रहा है. श्री मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों का

0: लाइसेंस राज बेरोजगारी बढ़ाने का माध्यम बना, जबकि उनकी सरकार की पीएलआई योजना नए अवसर पैदा कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही, बल्कि नियमों से जुड़ी पूरी नीति में बदलाव ला रही है।
1: 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सप्त धारा की, सप्त शक्तियों की बात की है, और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का हमेशा साझा भविष्य की भावना में विश्वास रहा है, इसी कारण भारत की G20 अध्यक्षता का मार्गदर्शक सिद्धांत एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य रहा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों के उतार चढ़ाव से यह स्पष्ट हुआ है कि हर देश का भविष्य दूसरे देशों के भविष्य से जुड़ा हुआ है।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अनेक उतार चढ़ाव देखे और इन अनुभवों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है, कोई चाहे या न चाहे हर देश का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है, आइसोलेशन में कुछ संभव नहीं है। इसलिए शेयर्ड फ्यूचर्स की ये थीम आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गई और भारत तो हमेशा से इसी भावना को लेकर चला है।
0: भारत और ब्राजील ने दूरसंचार और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। दूरसंचार विभाग ने बताया कि यह समझौता ब्रिक्स ITC बैठक से इतर हुआ। दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के सहयोग में सहयोग बढ़ाएगा। एक रिपोर्ट।
2: पुणे में आयोजित 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक से इतर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ब्राजील के संचार मंत्री फेडरिको डी सिक्वेरा फिल्हो के बीच हुआ। ये समझौता ज्ञापन दूरसंचार, डिजिटल बुनियादी ढांचे और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में व्यवस्थित सहयोग के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों में समावेशी, सुरक्षित और मजबूत डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना है। भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के संदर्भ में ये समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मानकों के क्षेत्र में अधिक सहयोग की वकालत करता रहा है। भारत ब्राजील समझौता दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी का भी एक हिस्सा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: बलूच नेशनल मूवमेंट ने नीदरलैंड में विरोध प्रदर्शन और रैली आयोजित कर पाकिस्तान वायुसेना द्वारा बलूचिस्तान प्रांत के सुराब जिले में हाल में किए गए हवाई हमलों की निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिकों के मारे जाने की खबर है। बलूच नेशनल मूवमेंट के कार्यकर्ता ने एम्स्टर्डम में रैली को संबोधित करते हुए सुराब हमलों को गंभीर मानवीय त्रासदी बताया और इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रांत में मानवाधिकारों की स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। प्रदर्शनकारियों ने संयुक्त राष्ट्र यूरोपीय संघ और वैश्विक मानवाधिकार संगठनों से सुराब में हुई बमबारी का तत्काल संज्ञान लेने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाने का आग्रह किया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान ने अमेरिका के किसी भी नई धमकी का कड़ा और निर्णायक जवाब देने की चेतावनी दी है। ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टार मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि ईरान की सेनाएं थल, जल, वायु, वायु रक्षा और साइबर क्षेत्र में पूरी तरह तैयार है। ये चेतावनी अमेरिका की ओर से ईरान पर नए और कड़े वित्तीय प्रतिबंध लगाने की योजना के बाद आई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा कि ऐसी नीतियों से ईरान में अमेरिका के प्रति नाराजगी और शत्रुता बढ़ेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का समर्थन करने वाले देशों को आर्थिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम

0: एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। श्री जायसवाल ने विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है।
1: टू शिप्स विच आर फॉरेन फ्लैग,
2: दो जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
1: वी आर इन टच विद द अथॉरिटीज दैट आर कंसर्न्ड इन दिस।
0: बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने आज ढाका के बंग भवन में बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। कार्यवाहक अध्यक्ष बैरिस्टर कैसर कमाल ने उन्हें शपथ दिलाई। श्री फखरुल इस्लाम आलमगीर कल जमात इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलीय गठबंधन द्वारा समर्थित ओली अहमद को हराकर राष्ट्रपति चुने गए। तीशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है और भारत के लिए कम से कम एक कांस्य पदक पक्का कर लिया है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आज खेले गए क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी ने विश्व की चौथे नंबर की जोड़ी जियाई फैन और झांग शूजियान के खिलाफ पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए जीत हासिल की और ये मुकाबला 16-21, 21-15, 21-13 से जीत लिया। इस जीत ने 2011 के बाद से महिला डबल्स में भारत का पहला मेडल भी पक्का कर दिया। 2011 में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक वृद्धि और संसाधनों का सस्त्रीकरण चिंताओं के बीच भारत विकास के एक उज्जवल केंद्र के रूप में उभर रहा है। भारत और ब्राजील ने डिजिटल नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बलूच समूह ने बलूचिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की। ईरान ने अमेरिका के किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी और बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद BWF विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a global bright spot for growth amid concerns over global growth and weaponization of resources. India and Brazil sign MOU to advance digital innovation and cooperation in emerging technologies. Baloch group condemns Pakistani airstrikes in Balochistan, calls for international probe. Iran warns of strong response to any new threats from the United States. And in badminton, Indian duo of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand advanced to women's doubles semi-finals of BWF World Championships. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said India is being seen as a bright spot of growth throughout the globe, even as the world has many concerns regarding growth and resources are getting weaponized. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi this evening, the Prime Minister said India continues to take several steps to ensure continued growth momentum and reforms are commitment of his government.
4: दुनिया ने बड़ा भयंकर ग्रुप देखा है इन दिनों, रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा, लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
3: The Prime Minister said India has moved away from production-linked punishment model during earlier governments to production-linked incentives now. He alleged it was policy of earlier regimes to keep people in scarcity so that they beg before the government for even basic needs. Mr. Modi said license raj of earlier governments was used

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में विकास और संसाधनों को लेकर कई चिंताओं के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विकास के उज्ज्वल उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। नई दिल्ली में आज शाम इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड्स लीडर फोरम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कई कदम उठा रहा है और सुधारों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों की नीति लोगों को अभाव में रखने की थी, ताकि वे बुनियादी जरूरतों के लिए भी सरकार के सामने हाथ फैलाने को मजबूर रहें। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही, बल्कि नियमों से जुड़ी पूरी नीति में बदलाव ला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाला नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
0: श्री शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है, जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित

0: आधारित है।
1: सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वह स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार के लिए चुने गए 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की तेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांगशू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज Read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi has said India is being seen as a bright spot of growth throughout the globe, even as the world has many concerns regarding growth and resources are getting weaponized. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi this evening, the Prime Minister said, India continues to take several steps to ensure continued growth momentum and reforms are commitment of his government.
3: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा, लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
2: The Prime Minister said India has moved away from production-linked punishment model during earlier governments to production-linked incentives now. He alleged it was policy of earlier regimes to keep people in scarcity so that they beg before the government for even basic needs. Mr. Modi said license raj of earlier governments was used to increase unemployment while his government's production-linked incentive model creating opportunities. Talking about the seven powers representing 7 key streams which he spoke about from the Red Fort, the Prime Minister highlighted that 7 such sectors include manufacturing power, agriculture and food processing, technology and innovation, and the green and blue economies on which India is placing immense focus. He said India is currently undertaking next generation reforms at the policy level to secure future and the government is implementing reforms in governance and ease of living. He said reform is not a compulsion as it is government's commitment and conviction. The Prime Minister highlighted that the rapid development and swift reforms taking place in India today because there is political stability and continuity in the government's policies. Union Home Minister Amit Shah has reiterated that the zero tolerance policy against illegal immigrants will continue and the detect, delete and deport process will be strictly followed. He said the government's commitment to deport every illegal immigrant from the country is utmost priority, adding that demographic change will be strictly stopped. The Home Minister was addressing a gathering in Siliguri, West Bengal today after inaugurating a 6-day awareness exhibition on the Bharatiya Nyaya Sahita at Kawakhali ground. Union Minister of Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav today launched the Mobile Phone Manufacturing Scheme, MPMS. The Union Cabinet had approved the scheme last month with a budgetary outlay of

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में आज के कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ एके भट्टाचार्य। एके भी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।
1: और सबसे पहले मुख्य समाचार।
0: Benchmark domestic stock market indices end on a flat note. Sensex settles at 77,541. Nifty adds 20 points. India's foreign exchange reserves rise by $9.9 billion in the week ending August 14. And global crude oil prices rise.
1: घरेलू शेयर बाजार सूचकांक आज लगभग सपाट बंद हुए। सेंसेक्स 77,541 पर पहुंचा, जबकि निफ्टी में 20 अंक की तेजी आई। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 14 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह में 9.90 अरब अमेरिकी डॉलर बढ़ा और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल।

0: And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और बढ़ते हैं अब खबरों की तरफ. देश के प्रमुख घरेलू शेयर बाजार सूचकांक आज लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में मामूली बढ़त दर्ज करते हुए लगभग सपाट बंद हुए. सेंसेक्स 3 अंक की बढ़त के साथ 77,541 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 20 अंक की तेजी दर्ज करता हुआ 24,252 पर पहुंच गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक में 0.10% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.07% का उछाल देखा गया. बाजार आज सुबह सकारात्मक रुख के साथ खुले, लेकिन पूरे दिन सीमित दायरे में कारोबार हुआ. भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और वैश्विक बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी तथा कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण बाजार पर दबाव भी बना रहा.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक एक्विटी इंडिसेस एंडेड फ्लैट.

0: with a positive bias today. Sensex added 3 points to close at 77,541. Nifty rose by 20 points to settle at 24,252. In the broader market at the NSE, the mid-cap 100 index gained 0.10%, while the small-cap 100 index increased by 0.7%. Despite opening on a positive note in the morning, markets witnessed range-bound trading throughout the day due to geopolitical uncertainties, elevated global bond yields and high crude oil prices.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 16 कंपनियों के शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए. प्रमुख कमजोर शेयरों में ट्रेंट और मारुति में 1.51% से अधिक की गिरावट आई, जबकि इंडिगो 1.35% और एचसीएल टेक्नोलॉजी में 1.2% का गिरावट देखी गई. वहीं तेजी वाले शेयरों में पावरग्रिड 2.66%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1.17% और कोटक महिंद्रा बैंक 1.08% में लाभ देखा गया.
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 17 out of the 28 sectors registered gains. The top gainers were insurance that rose by 0.94%, utilities as well as mid-small private banks, a quality tilt around 0.7%, mid-small private banks added 0.65%. Among the laggards, FMCG and auto shed 0.68%. Housing finance fell by 0.61%, while hospitals lost 0.5%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive as shares of 2,240 companies advanced, 2,093 companies declined, and shares of 231 companies remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में लगभग सपाट रहते हुए 95.71 रुपए पर बंद हुआ. एकेबी कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है.
2: नमस्कार.
1: मार्केट में आज लगातार दूसरे दिन एक सकारात्मक रुख देखा गया, इससे क्या ये मानकर चलना चाहिए कि सीमित दायरे में कारोबार किया जा रहा है या फिर बाजार में कहीं कोई तेजी आने की संभावना नजर आ रही है?
2: देखिए, सीमित दायरे में काम किया जा रहा है. जो धंधा लोग कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट निवेश कर रहे हैं, सीमित में दौर से काम कर रहे हैं. जो दो तीन जो ट्रेंड जो है वो अभी भी मार्केट के मूवमेंट को इन्फ्लुएंस कर रही है. पहली बात तो यह है कि जो विश्व की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें की जो अनिश्चयता. दूसरी कारण ये है कि जो बाजार में, वैश्विक बाजार में जो जो बॉन्ड मार्केट में जो थोड़ा खलबली तो नहीं कहूँगा मैं, पर उसके यील्ड में जो उसका मतलब जो इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, कॉस्ट ऑफ मनी में जो जो चढ़ाव हो रहा है, जो जो दाम बढ़े हैं वो है. और तीसरा जो है आपका जो क्रूड ऑयल का जो दाम जो है उसका आउटलुक. अभी तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहे हैं, पर द लेटेस्ट जो जो ट्रंप साहब का जो ऐलान है कि वो एक इकोनॉमिक वॉर ईरान के ऊपर छेड़ेंगे, उससे क्रूड ऑयल मार्केट में एक उसका एक प्रभाव दिख रहा है. और ये तीनों चीज, जो वैश्विक अनिश्चयता और जो बॉन्ड यील्ड में चढ़ाव और तीसरा आपका जो क्रूड ऑयल के दाम और यूएस की इकोनॉमिक सैंक्शंस को, इकोनॉमिक वॉर वो करेंगे, एक न्यू डीडीए फॉर द इकोनॉमिक वॉर वो करेंगे, उससे काफ़ी मार्केट में और उसी का एक थोड़ा बहुत प्रतिफलन हमें डोमेस्टिक मार्केट में दिख रहा है. और जो कल जो मार्केट में जो हमने जो करीबन 0.8 और 0.9% वृद्धि देखी हमने सेंसेक्स में कल, उसका कारण भी ये था कि उनके पिछले 7 दिनों में काफ़ी नीचे था, वो जरा रिकवरी होकर स्टेबिलाइज किया है. पर अगर आप पूरी तरह से अगर 6 महीने की देखें, अगर वॉर से देखें, तो मैं समझता हूँ कि भारत की जो स्टॉक मार्केट में है वो उसी जगह अटकी हुई है जहाँ वो उस समय थी.
0: AKB, do you think that Trump's announcement of this initiative of isolating Iran, the economic D-Day as he calls it, is triggering how the global markets are behaving, including the Sensex and Nifty right now? Because fundamentally, the first quarterly results for the new financial year has been quite positive on the net profit side, on the revenue side. Even margins of our companies have improved. Do you think, even from the point of view of the PMI index for services and

0: And why is it happening? It's because Japan has clearly embarked on a new economic development strategy where more money is being pumped into to ramp up its pace of economic activity, which naturally is engendering this kind of inflationary potential in the economy. So it's a little bit of inflation, less than 2%, is a good sign for any economy. And I would say that there is also no panic. And if you see that, its stock market is also not reflecting any panic reaction to an inflation which is less than 2%.
1: So the Japanese are concerned because it's linked to wages. They want higher wages.
0: So if it is 2% or 1.5% or 1%, they expect better wages. So very simple.
2: सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि वो स्थिति पर करीबी से नजर रख रहा है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में चीनी की कीमत बढ़ी है। पिछले महीने की 20 तारीख को चीनी की कीमत 48 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जो कल बढ़कर करीब 55 रुपए प्रति किलोग्राम पर हो गए। एक ही भी इस खबर पर आपके क्या विचार होंगे, क्या कहना चाहेंगे आप?
0: देखिए जो हुआ है वो तो जो अक्टूबर से सितंबर का जो शुगर सीजन जो है उसमें जो स्टॉक लेवल जो सितंबर में आएगी वो लेवल जो कंफर्टेबल लेवल जो होता है उससे करीबन 1 मिलियन टन और 1.5 मिलियन टन कम होगा। इसीलिए सरकार का प्लान भी है कि वो रॉ शुगर 0% ड्यूटी में इंपोर्ट करने का भी उन्होंने एक निर्णय लिया है। वो अगर 1 मिलियन टन इंपोर्ट आ जाए उससे ज़रूर हमारी जो डोमेस्टिक शुगर प्राइसेस की जो स्थिति जो है उसमें कुछ कंट्रोल आएगी। पर उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जो शुगर की जो एक डिमांड जो है वो इथेनॉल की सेक्टर को करीबन 2.4 मिलियन टन को इथेनॉल को जाती है, तो वो उससे भी ये प्रेशर बढ़ गया है। और क्योंकि इंपोर्ट का निर्णय लिया गया है, जो शुगर स्टॉक्स जो है अगर आप देखें स्टॉक मार्केट में आज की तारीख में शुगर स्टॉक्स में भी काफ़ी एक एडवर्स इम्पेक्ट आया है, क्योंकि जो शुगर कंपनियाँ जो हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी बहुत कमी आएगी, इंपोर्ट आने से उनके दाम घट जाएंगे। तो ये एक सार्वजनिक दृष्टिकोण है, पर मैं समझता हूँ कि शुगर इकोनॉमी एक बहुत बड़ी एक आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत एक महत्वपूर्ण सेक्टर है।
2: जी।
1: In more news, the unincorporated establishments in the non-agriculture sector continue their growth momentum in the first quarter of this financial year. Despite global uncertainty, the sector grew by 9.2% year-on-year for the April to June quarter, according to the quarterly bulletin of unincorporated sector enterprises released by the Ministry of Statistics and Program Implementation today. The estimated number of establishments increases 8.67 crore in this period. Employment in the unincorporated non-agricultural sector reached 13.7 crore, with the other services sector emerging as a key driver, recording employment growth of more than 21%. This is followed by the manufacturing sector, which registered growth of 10.06% in the estimated number of establishments and 6.6% in the estimated workforce. However, the unincorporated trade sector recorded a year-on-year decline of 7.88% in the estimated number of establishments and 7.29% in the estimated workforce. So your comments briefly on this, the unincorporated sector enterprises, the quarterly bulletin that's come out.
0: Well, I think the unincorporated sector is a very important sector. They represent the largest segment of the Indian industry. But I think it's important to note that the urban sector has done better than the rural sector in jobs. And there is a welcome trend that we see of how women employment in these unincorporated sector has seen a significant rise. So both these developments, to my mind, are significant.
1: In more news, the Income Tax Department has said that over 6.5 crore income tax returns have already been filed for the

0: assessment year 2026-27. It includes more than 2 crore ITRs 3 and 4 till yesterday. The department has urged taxpayers to avoid the last-minute rush as the last day to file ITR 3, 4, 5 and 7 is before the 31st of this month.
1: सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें से एक प्रमुख योजना प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा है, जिसकी शुरुआत सितंबर 2018 में की गई थी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले कई वर्षों में इस योजना के तहत बजट आवंटन में काफी बढ़ोतरी हुई है। इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए दामों में स्थिरता बनाए रखने के साथ साथ किसानों को उनके परिश्रम का उचित मूल्य दिलाना है। योजना के अंतर्गत 2024-25 में वास्तविक खर्च लगभग 5,400 करोड़ रुपए था, जो 2026-27 में बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया।
0: In more news from the crude oil market, global crude oil prices rose today. Brent crude was trading 0.67% up at $94.41 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.48% higher at $87.25 per barrel when reports last came in. How concerned are you, AKB? Because even the Urals oil, which comes from Russia, is trading at $89 per barrel because what's happening between Russia and Ukraine in that war. And now you have the threat of economic D-Day on Iran by the US president. How concerned are we about global inflation here?
2: It is a cause for concern. If the situation persists, it will definitely mean a bigger burden on India's crude oil import costs. So therefore, and domestic oil companies, which have reasonably weathered the first few months of impact of the West Asian war, reasonably well, I would say, along with the government support of reducing the taxes and all that. If this remains at this level for some more time, it will be a cause for concern, prompting the government and the oil companies to take some more steps by which the bottom lines and protection is taken.
1: और आगे बढ़ते हैं। भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट वाला सोना आज 2.25% के उछाल के साथ 1,60,620 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। इस बीच चांदी 3.72% ऊपर चढ़कर 2,46,630 रुपये प्रति किलोग्राम थी। एकेबी, हमने अभी देखा कि पिछले 2-3 दिनों में सोना और चांदी दोनों में उछाल देखने को मिल रहा है। इसके पहले एक दायरे के बाद से थोड़ी सी गिरावट भी देखी जा रही थी, इस पर आपके क्या विचार हैं?
2: देखिए, फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है। अगले हफ्ते राखी है, राखी के सामने उसके बाद फेस्टिवल सीज़न का आना होता है। मैं समझता हूँ कि अब गोल्ड की डिमांड भी बढ़ेगी और उसके दामों में भी थोड़ी बहुत वृद्धि होगी और उसी का एक आभास इशारा कर रहा है कि गोल्ड के दामों में और भी वृद्धि आने वाली है।
1: एकेबी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू।
0: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices end on a flat note. Sensex settled at 77,541. Nifty adds 20 points. India's foreign exchange reserves rise by $9.9 billion in the week ending August 14. And global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
1: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: 101.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। दोस्तों, आपका पसंदीदा गीत मेरे मन मीत लेकर एक बार फिर स्टूडियो से साथ हूं मैं रोहिणी। कहते हैं मन की बातें गीतों के अंदाज में बयां हों तो दिल को और भी गहराई से छू जाती हैं। आज का गीत मेरे मन मीत कुछ इसी अंदाज में सजा है और कुछ यही अंदाज बयां कर रहा है। बड़े प्यारे अल्फाज हैं कि नजरों की बातें नजरों से कहां होती हैं, ये तो दिल से दिल की राह होती है। इन राहों पर चलते चलते 100.1 मेगाहर्ट्ज पर खुद ब खुद हो जाती है। जी हाँ, आइए आज के मनमीत गीत मेरे मनमीत को बनाते हैं कुछ बहुत खास और चुरा लेते हैं इन गीतों के अंदाज से आपका भी दिल। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आइए आगाज करें आज के गीत मेरे मनमीत का इस गीत के साथ जो कि रचा बसा है आशा जी और रफी जी की आवाज में। इस गीत को अल्फाज दिए थे मजरू सुल्तानपुरी साहब ने और संगीत बद किया था आजी बर्मन जी ने।
1: नेरम 11 मणि 40 निमिडम।

0: முகத்துக்கு மேலே முகத்தை வச்சு ஒன்னு கொடுக்க வேணும், கொடுத்ததை திருப்பி எடுக்க வேணும். முகத்துக்கு மேலே முகத்தை வச்சு.
1: திரைகாணம் கேட்டீர்கள். சில நொடிகளில் இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள் தொடரும். டெல்லி அஞ்சல்.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत को विकास की एक बड़ी उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधार उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है और भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं ला रही बल्कि नियमों की पूरी नीति में बदलाव ला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमेशा से साझा भविष्य की कामना में विश्वास करता आया है।
3: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और इन अनुभवों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है, कोई चाहे या न चाहे हर देश का भविष्य, उसका फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। आइसोलेशन में कुछ संभव नहीं है, इसलिए शेयर्ड फ्यूचर्स की ये थीम आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है और भारत तो हमेशा से इसी भावना को लेकर चला है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ी 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का एक अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग $12 अरब का है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी। मंत्रालय ने इस योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेश

इसी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, AI, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। महिला हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण के अपने पहले मुकाबले में भारत को नीदरलैंड्स से हार का सामना करना पड़ा। अम्स्टरडैम में खेले गए मुकाबले में नीदरलैंड्स ने भारत को 0-2 से हरा दिया। भारत की ये टूर्नामेंट में पहली हार है। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यीफेन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: கேட்ட நிகழ்ச்சி இரவின் மடியில். சில நொடிகளில் தொடர்வது இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत को विकास की एक बड़ी उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधार उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है और भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही बल्कि नियमों की पूरी नीति में बदलाव ला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमेशा से साझा भविष्य की भावना में विश्वास करता आया है।
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और इन अनुभवों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है, कोई चाहे या न चाहे हर देश का भविष्य, उसका फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। आइसोलेशन में कुछ संभव नहीं है, इसलिए शेयर्ड फ्यूचर्स की ये थीम आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है और भारत तो हमेशा से इसी भावना को लेकर चला है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार के लिए चुने गए 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से एक हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहतर इस्तेमाल करने की जरूरत है। जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि अब पर्यटन को जिम्मेदारी के साथ बढ़ावा देने पर ध्यान देने की जरूरत है। भारतीय महिला पहलवान काजल डोचक ने लगातार दूसरी बार अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में काजल ने फाइनल में चीन की जिंगरू सून को 7-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। उधर 72 किलोग्राम वर्ग में भारत की तनु शर्मा और 62 किलोग्राम वर्ग में सविता ने रजत पदक अपने नाम किया। महिला हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण के पूल ई मुकाबले में भारत को नीदरलैंड्स से हार का सामना करना पड़ा है। अम्स्टलफेन में खेले गए मुकाबले में नीदरलैंड्स ने भारत को 0-2 से हरा दिया है। भारत की ये

நடையிலே

0: கேட்ட பாடலுடன் நிறைவுபெறுகிறது நினைவில் நின்றவை. சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பவதாரணி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत को विकास की एक बड़ी उम्मीद के रूप में देख रहा है. उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत

0: दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधार उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है और भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही है, बल्कि नियमों की पूरी नीति में बदलाव ला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमेशा से साझा भविष्य की भावना में विश्वास करता आया है।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और इन अनुभवों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है, कोई चाहे या न चाहे, हर देश का भविष्य, उसका फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। आइसोलेशन में कुछ संभव नहीं है, इसलिए शेयर्ड फ्यूचर्स की ये थीम आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है और भारत तो हमेशा से इसी भावना को लेकर चला है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। श्री जायसवाल ने विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहतर इस्तेमाल करने की जरूरत है। जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि अब पर्यटन को जिम्मेदारी के साथ बढ़ावा देने पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में भारत में पर्यटकों की संख्या 3 गुना बढ़ी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने ढाका के बंग भवन में बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। कार्यवाहक अध्यक्ष बैरिस्टर कैसल कमाल ने उन्हें शपथ दिलाई। बांग्लादेश में संसद में मतदान के माध्यम से अंतिम राष्ट्रपति चुनाव 8 अक्टूबर 1991 को हुआ था। स्विट्जरलैंड के लुसाने में हुई डायमंड लीग में भारत के नीरज चोपड़ा ने 88.05 मीटर भाला फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया। श्रीलंका के रुमेश फथेराज ने 88.14 मीटर के थ्रो के साथ नीरज को सिर्फ 9 सेंटीमीटर के अंतर से पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 86.69 मीटर थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहे। महिला हॉकी विश्व कप में दूसरे दौर के पुल मुकाबले में नीदरलैंड्स ने भारत को 0-2 से हरा दिया है। भारत की ये टूर्नामेंट में पहली हार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi has said India is being seen as a bright spot of growth throughout the globe, even as the world has many concerns regarding growth and resources are getting weaponized.

eso.

0: நேயர்கள் இதுவரை கேட்டு ரசித்த இந்த நிகழ்ச்சி 100.1 எஃப்எம் கோல்டு வழங்கிய நெஞ்சம் மறப்பதில்லை. தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பவ்தாரணி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत को विकास की एक बड़ी उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधार उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है और भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही है बल्कि नियमों की पूरी नीति में बदलाव ला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमेशा से साझा भविष्य की भावना में विश्वास करता आया है।
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और इन अनुभवों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है, कोई चाहे या न चाहे हर देश का भविष्य उसका फ्यूचर

0: कल्चर एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है, आइसोलेशन में कुछ संभव नहीं है। इसलिए शेयर्ड फ्यूचर्स की ये थीम आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है और भारत तो हमेशा से इसी भावना को लेकर चला है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। मणिपुर में इम्फाल दीमापुर गुवाहाटी मार्ग पर लगभग 3 साल के अंतराल के बाद सार्वजनिक परिवहन सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। ये कदम राज्य में सामान्य स्थिति और आपसी संपर्क को बहाल करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर कुल 125 यात्रियों ने यात्रा की। हिमाचल प्रदेश के 36 सरकारी प्रबंधन वाले मंदिरों में 1 जनवरी 2024 से 1 अगस्त 2026 के बीच करीब 419 करोड़ 88 लाख रुपए का चढ़ावा मिला है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा में बताया कि राशि मंदिरों के रखरखाव, साफ सफाई, धार्मिक कार्यक्रमों, मेलों और पुजारियों और कर्मचारियों के वेतन पर खर्च की जाती है। यूक्रेन के मध्य हिस्से के क्रिवी रिह शहर में रूसी ड्रोन हमले में 15 लोगों की मौत हो गई और 130 लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार घायलों में 23 बच्चे भी शामिल हैं। ये हमला एक शॉपिंग मॉल को निशाना बनाकर किया गया। क्रिवी रिह यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की का गृह नगर है। स्विट्जरलैंड के लुसाने में हुई डायमंड लीग में भारत के नीरज चोपड़ा ने 88.05 मीटर भाला फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया। श्रीलंका के रुमेश पथिराज ने 88.14 मीटर के थ्रो के साथ पहले स्थान पर रहे। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 86.69 मीटर भाला फेंककर तीसरे स्थान हासिल किया। महिला हॉकी विश्व कप में दूसरे दौर के पूल मुकाबले में नीदरलैंड्स ने भारत को 2-0 से हरा दिया है। भारत की ये टूर्नामेंट में पहली हार है। नीदरलैंड्स के दोनों गोल पेनल्टी कॉर्नर से हुए। युब्बी यानसेन और फ्रेडरिके मार्टला ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் அதனைத் தொடர்ந்து ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள் ஒலிபரப்பாகும். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பவதாரணி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत को विकास की एक बड़ी उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधार उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है और भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही बल्कि नियमों की पूरी नीति में बदलाव ला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमेशा से साझा भविष्य की भावना में विश्वास करता आया है।
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और इन अनुभवों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है, कोई चाहे या न चाहे हर देश का भविष्य, उसका फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। आइसोलेशन में कुछ संभव नहीं है, इसलिए शेयर्ड फ्यूचर्स की ये थीम आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है और भारत तो हमेशा से इसी भावना को लेकर चला है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है।

0: बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक आज होगी जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक कल होगी। बैठक की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स सदस्य देशों के खेल मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए किया गया है। मणिपुर में इम्फाल दीमापुर गुवाहाटी मार्ग पर लगभग 3 साल के अंतराल के बाद सार्वजनिक परिवहन सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। ये कदम राज्य में सामान्य स्थिति और आपसी संपर्क को बहाल करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर कुल 125 यात्रियों ने यात्रा की। अमेरिका के अलास्का में घने कोहरे के बीच एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान में सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 पायलट और 6 यात्री शामिल हैं। स्विट्जरलैंड के लुसाने में हुई डायमंड लीग में भारत के नीरज चोपड़ा ने 88.05 मीटर भाला फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया। श्रीलंका के रुमेश पथिराज 88.14 मीटर की थ्रो के साथ पहले स्थान पर रहे। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने तीसरा स्थान हासिल किया। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर दिया है। सेमीफाइनल मुकाबला आज खेला जाएगा। महिला हॉकी विश्व कप में दूसरे दौर के पुल मुकाबले में नीदरलैंड्स ने भारत को 2-0 से हरा दिया है। भारत की यह टूर्नामेंट में पहली हार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi has said India is being seen as a bright spot of growth throughout the globe, even as the world has many concerns regarding growth and resources are getting weaponized. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi last evening, the Prime Minister said the International Monetary Fund forecast that India will remain the world's fastest growing major economy. He said, India continues to take several steps to ensure continued growth momentum and that reforms are a commitment of his government. Mr. Modi said, India has moved away from a production-linked punishment model during earlier governments to production-linked incentives now. He alleged it was a policy of earlier regimes to keep people in scarcity so that they would beg from the government for even basic needs. Talking about the 7 powers representing 7 key streams, which he spoke about from the Red Fort, the Prime Minister highlighted that these 7 sectors include manufacturing power, agriculture and food processing, technology and innovation, and the green and blue economies on which India is placing immense focus.
2: 15 August ko, maine Lal Kile se Sapta Dhara ki सप्त शक्तियों की बात की है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है।
1: The Union Home Minister Amit Shah has reiterated that the zero tolerance policy against illegal immigrants will continue and the detect, delete and deport process will be strictly followed.

0: இன்னும் சில நொடிகள் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் அதனைத் தொடர்ந்து ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே தேவேந்திர திரிபாதி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है. उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं. नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार केवल नियम नहीं बदल रही बल्कि नियम बनाने की सोच भी बदल रही है. उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI के जरिए उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है. प्रधानमंत्री ने कहा कि स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और देशों के बीच अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं. इसके बावजूद भारत को दुनिया में विकास और उम्मीद की एक बड़ी किरण के रूप में देखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा. प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल है. प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं. उन्होंने डिजिटल क्षेत्र में भारत की प्रगति और तेज 5G विस्तार का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक परिवार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़े हैं. उन्होंने बताया कि PM कुसुम योजना से किसानों को बिजली की लागत कम करने में मदद मिली है. प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं, महिलाओं, किसानों और मध्यम वर्ग के लिए जीवन आसान बनाने और कारोबार को सुगम बनाने पर लगातार काम कर रही है. उन्होंने विश्वास जताया कि भारत की प्रगति से वैश्विक स्थिरता भी मजबूत होगी. प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की. उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है. बैठक में स्टार्टअप्स संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे. भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा. ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक आज होगी जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक कल होगी. बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे. मंत्रालय ने कहा कि ब्रिक्स खेल मंत्रियों

0: की बैठक में 11 ब्रिक्स सदस्य देशों के खेल मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। इससे पहले भारत की अध्यक्षता में जयपुर में हुई ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक कल जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी देने के साथ संपन्न हुई। जयपुर घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए पूरा किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए हैं। मणिपुर में इम्फाल दीमापुर गुवाहाटी मार्ग पर लगभग 3 साल के अंतराल के बाद सार्वजनिक परिवहन सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। ये कदम राज्य में सामान्य स्थिति और आपसी संपर्क को बहाल करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर कुल 125 यात्रियों ने यात्रा की। स्विट्जरलैंड के लुसाने में हुई डायमंड लीग में भारत के नीरज चोपड़ा ने 88.05 मीटर भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। स्लोवाकिया में चल रही अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की काजल ढोचक ने महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 18 वर्षीय काजल ने फाइनल में चीन की जिंगरू सन को 7-0 से हराकर विश्व खिताब अपने नाम किया। काजल इससे पहले 2024 में अंडर-17 विश्व चैंपियन और 2025 में अंडर-20 विश्व चैंपियन का खिताब भी जीत चुकी हैं। भारत की तनु शर्मा और सविता ने भी प्रतियोगिता में रजत पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi has said that reforms are not a compulsion but a commitment and conviction for his government, and that its policies are pro-people, pro-growth and pro-development. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi last evening, Mr. Modi said his government has created a clear roadmap for reforms, with the primary focus being on reforms at the governance level. He said, India is undertaking next generation reforms at the policy level to secure the country's future.
2: 15 August ko maine lal kile se sapta dhara ki sapta shaktiyon ki baat ki hai aur isliye Bharat aaj policy level par next generation reforms kar raha taki hamara future surakshit ho, governance par reforms kar raha hai, ease of living ke liye reforms kar raha hai.
1: The Prime Minister pointed out that his government is not merely changing regulations, but is changing the entire philosophy behind them. He said that earlier the approach to regulations was prohibited unless permitted. He said the government is transforming this approach and moving towards permitted unless prohibited. The Prime Minister also spoke about the global economic environment, saying that the weaponization of resources and growing mistrust were creating new challenges. He said that even in such circumstances, the world continues to see India as a bright spot of hope and growth. The Union Home Minister Amit Shah has reiterated that the zero tolerance policy against illegal immigrants will continue and the detect, delete and deport process will be strictly followed. He said the government's commitment to deport every illegal immigrant from the country is utmost priority, adding the demographic change will be strictly stopped. The Home Minister was addressing a gathering in Siliguri, West Bengal yesterday after inaugurating a 6-day awareness exhibition on the Bharatiya Nyaya Sahita at Kavakhari ground. Union Health and Family Welfare Minister J.P. Nadda reviewed the prevailing situation and preparedness for H1N1 influenza in the country, with particular focus on the national capital. The Health and Family Welfare Ministry informed that during the meeting, Mr. Nadda emphasized the need for continued vigilance, robust surveillance and proactive preparedness with close monitoring of influenza trends. The Health Minister reiterated that the situation is being closely and continuously monitored.